0: दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में हमेशा यही करते आए हैं, विचार करते हैं भला हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं इस दुनिया में, कैसे हमें जीना चाहिए। ये गंभीर विषय है, आसान नहीं है, ये फन नहीं है, ये अपने आप को समझने की कहानी है। और इसी कहानी के लिए हम कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं जो हमें समझा सकें, एक सरल भाषा में बता सकें भला क्या है आध्यात्म। तो आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहन कृष्णन साहब। मोहन कृष्णन साहब का मैं स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ईश्वर की कृपा से वो कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। मोहन साहब,
1: जय श्री राम, नमस्ते। मैं मोहन कृष्ण अभी चेन्नई वासी हूँ। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में
0: जी,
1: और पढ़ाई वहीं हुआ था, और फिर मैं रिजर्व बैंक में नौकरी ले लिया और सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में सेटल हो गया। और मुझे 30 साल की उम्र से महात्मा इनके साथ सत्संग का मुझे सौभाग्य मिला और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ। और समझिए 18 अध्याय भगवत गीता का मैंने एक बहुत ही संत के उनके चरण में बैठ के मैं इसकी अध्ययन किया था, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं सेवानिवृत्ति लिया हूँ और लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सेवा हो सके वो करता हूँ।
0: बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम हमको समझने के लिए है और आप से हमें उस सहायता की अपेक्षा है जिसे हम अपने आप को, हमारे सुनने वाले अपने आप को पहचान सकें। तो एक शब्द है, एक विधा है, एक धारा है जिसको आध्यात्म कहते हैं। तो एक साधारण मनुष्य को समझने के लिए मोहन जी हमें बताएं, आध्यात्म क्या समझें हम, आध्यात्म का क्या मतलब हम माने।
1: अध्यात्म को समझ के लिए जरा बारीकी की सोच की जरूरत है। इस संसार में दो ही चीज है, एक है अहम मैं और दूसरा है इदम ये सब
0: जी।
1: इदम जो ये सब है उसे अनात्मा कहते हैं, और अहम जो मैं हूं उसको कहते हैं आत्मा, और ये आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं, उसके साथ जो संबंध बनाए रखना है उसे अध्यात्म कहते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सीधी सी तौर पे मोहन साहब, क्या मैं ये समझूं कि आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं?
1: हाँ, आत्मा की अध्ययन, आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं।
0: वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यहां पर दोस्तों आपने गौर किया हो, मोहन सर ने दो चीजें बताई, एक तो अपना अध्ययन आध्यात्म, और नहीं अहम एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और दूसरा था इदम। मैं ठीक कह रहा हूँ सर?
1: जी ठीक कह रहे हैं, इदम
0: इदम। मतलब देखिए, ये शब्द मुझे, सच बोलूं मुझे नहीं पता था, और हमारे अच्छा। सुनने वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इदम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि आध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए, और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और आध्यात्म में फर्क है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है।
1: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान
0: जी।
1: अभी ये कि मनुष्य में एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन, क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जो क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना, आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत

0: ट्रांसलेशन हो गया मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
1: जी जी जी, जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं
0: जी,
1: उचित आचरण करते हुए बस उसी को धर्म कहते हैं,
0: उसी को धर्म कहते हैं।
1: क्या बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
2: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए। सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग। हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी।
1: मैं किस लिए, वो कहते हैं भज गोविंदम एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही
1: है। उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी, कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं न किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अर्थ है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाए। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले ले और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं, लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है। वो आनंद लेता है ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में निकलता है बस शिवोहम शिवोहम शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना है, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर भी उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए, छोड़िएगा नहीं वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
1: अच्छा, अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो स्वयं प्रकाश नहीं है जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
0: ओके।
1: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
0: जी,
1: और मैं बोल रहा हूँ समीर जी आप हैं
0: जी जी जी,
1: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ, बीवी से पूछ के बताता हूँ?
0: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं हूँ।
1: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
0: क्या बात है जी।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
0: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा
1: जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुर आदि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूँ वो अनात्मा है।
0: ओके जी।
1: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं
0: जी जी जी।
1: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
0: हाँ,
1: हाँ. ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है। कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
0: हूँ। करेक्ट, ब्यूटीफुल।
1: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
0: जी।
1: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
1: अच्छा, देखिए यहां दो चीज है। एक तो है विश्वास
0: जी।
1: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
0: वाओ, ओके।
1: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैं तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
0: जी। जी,
1: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं मां के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
0: करेक्ट।
1: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के मां के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
0: जी।
1: एप्पल एप्पल जो है, जो सेब जो है, कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था। वो वक्त आने पर, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीज से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
0: सुंदर।
1: और कुछ दिनों के बाद ये जो है, जो प्रकट हुआ, वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट। इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
0: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों। कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा। लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरी जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई लोगों को

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई, रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ, जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट, और माय एक्सपेक्टेशन इज मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑल राइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल, कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमाखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं, कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है, कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है हमारी गैलेक्सी, या इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोग क्या है, वो उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है।
0: जी,
1: अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत

एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया। ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: तो जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि ये बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें

0: जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं।
1: जी
0: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले ए प्लस बी दी होल स्क्वायर सीखना चाहिए।
1: सही
0: तो आप
1: बात है।
0: ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा।
1: जी।
0: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही। उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप वन कर्म योग, स्टेप टू उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये थ्री स्टेप्स एब्सोल्यूटली जरूरत है। कर्म योग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन।
1: जी
0: इसमें सब कुछ आ जाते हैं।
1: जी श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
0: निध्यासन,
1: नित्यासन।
0: निधि निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या,
1: अच्छा
0: निधि ध्यासन।
1: निधि ध्यासन।
0: निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर घी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
1: ओके ओके ऑलराइट। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने तीन स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे, मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एल्जेब्रा को समझने के लिए पहले आप ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एल्जेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
0: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ,
1: जी
0: बाकी सब ईश्वर कृपा है।
1: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
0: बहुत अच्छा लगा। ईश्वर कृपा, गुरु ईश्वर अनुग्रह, गुरु कृपा से मैं आपसे दो शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि
1: थैंक यू।
0: जरा टेक्निकल है, जरा
1: जी
0: समझने में।
1: ऑफ कोर्स।
2: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है, ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1962, एक नया देश अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है। कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं दोस्तों। हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा। एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट। वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूँ? बिशप थोड़े हैरान होते हैं। प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ। जी हाँ, एक साथ। और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है? इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है। ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया। उनके लिए नया चर्च बना, और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस कम, लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे। हाँ, साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोज कोन को हाथ से फाइल किया, ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं, हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन जुनून फुल ऑन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन, पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं हैं, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया। लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं, उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है, थुम्बा। आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता, लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल सी जगह, कोई छोटा सा रिसोर्स जिसे आप इग्नोर कर देते हो या इग्नोर कर रहे हो? क्या पता वही आपका रॉकेट लैब हो। हम बोलते हैं, यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, परफेक्ट सेटअप नहीं है। और वहां लोग साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे थे। दोस्तों, बड़े सपने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा चर्च भी स्पेस लैब बन सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक के लिए सपने जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

एक किताब और एक एहसान जो जिंदगी बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सिंपल है, ना इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है, ना कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन फिर भी ये कहानी दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि ये कहानी है इंसानियत की, दया की और एक छोटी सी मदद की जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक महान शिक्षक और उनका असर। चलिए शुरू करते हैं एक इंसान से, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, एक बड़े शिक्षक, एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन ही उनकी पहचान नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनका दिल। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगियां बदलते थे। उन्होंने कई स्टूडेंट्स की फीस माफ की, स्कॉलरशिप्स दी, उन्हें सपोर्ट किया। जिन लोगों के पास सपने तो थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, दोस्तों ऐसे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, रास्ते बनाते हैं। एक किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं थी। एक दिन एक 25 साल का लड़का अपने हाथ में एक किताब पकड़े खड़ा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये एक अवार्ड थी, एक अचीवमेंट थी, एक सपने का सिंबल थी। इस किताब के फर्स्ट पेज पर मुदलियार सर का हैंड रिटन नोट था, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, बिलीफ। और उसके अंदर एक और चीज थी, एक मुरझा हुआ सा लेटर, एक लेटर जिसने सब बदल दिया। ये लेटर उसके गांव से आया था, उसके पिताजी का मैसेज था जो एक बोटमैन थे। लेटर में लिखा था, बेटा कल रात बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमारी नाव बह गई, घर भी टूट गया, मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। एक तरफ सपना, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फैमिली। एक फैसला जो आसान नहीं था। सुबह के 7 बजे वो लड़का खड़ा है एक सेकेंड हैंड बुक शॉप के बाहर, मूर मार्केट में। उसके हाथ में वही किताब है, दिल में कंफ्यूजन है और दिमाग में एक ही थॉट है, घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम, पैसे नहीं है। और सोल्यूशन, किताब बेचनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मोमेंट। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अपनी सबसे प्रेशियस चीज छोड़नी पड़ती है। वो किताब सिर्फ पेपर नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी, उसका सपना था। लेकिन फैमिली के लिए वो सब छोड़ने को रेडी था। शॉप खुलती है, ओनर आता है, लैम्प जलाता है, छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर काउंटर पर बैठता है। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ता है और किताब उसके सामने रख देता है। एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है, 150 रुपये। ओनर कहता है, ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है, ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है, ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी।
और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं इसे यहां सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल, जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूं एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प, किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए, अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीस बन जाना, क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूफ करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं है, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदी हो चुके हैं। दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है, लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है, लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती है। सोचिए अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे, तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री,
प्लस एंड माइंड यू अ वेरी बिग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक अप्रोच की कहानी है, जहां देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है. मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे आज की एक नई कहानी. अगली कहानी तक के लिए अपने देश से प्यार करिए, लेकिन सिर्फ फील मत करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए. क्योंकि याद रखिए, देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है. मेरा भारत महान. और नीचे छोटे शब्दों में बनाना पड़ेगा. नमस्कार.

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत शॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है बॉलीवुड का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो पर्दे पर दिखते नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम जिनका काम है सही चेहरे को सही किरदार तक पहुंचाना, कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया। समीर जी ने फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, एड्स और शॉर्ट फिल्म्स तक में काम किया है। Z5, अमेजन प्रोजेक्ट से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स और डिजिटल कैंपेन्स तक इन्होंने न जाने कितने टैलेंट्स को स्क्रीन तक पहुंचाया है। आज हम जानेंगे कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, न्यू टैलेंट कैसे डिस्कवर होता है, राज कपूर के दौर से लेकर OTT एरा तक कास्टिंग कैसे बदली है, और वो सवाल जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, कास्टिंग काउच की रियलिटी क्या है। तो तैयार हो जाइए एक बिहाइंड द सीन्स जर्नी के लिए, जहां हम समझेंगे फिल्मों की दुनिया का वो पहलू जो दिखता कम है लेकिन बनाता बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम समीर पहाड़िया जी।
2: थैंक यू वेरी मच सर, और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और सभी जितने भी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज सर कंटिन्यू।
1: तो समीर जी, बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। बचपन कहाँ बीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी की, कुछ बताइए उसके बारे में।
2: तो सर ऐसा है कि मेरी जो बचपन की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें टीचर की फैमिली है। मेरे पिताजी बेसिकली रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट के, तो उनसे वो बचपन से ही हमें जो संस्कार और जो थ्योरी है ना, जो एक जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की, वो उनसे मिली है। पूरा घर का माहौल भी वही है कि मेरे बड़े भैया हैं जगदीश पाड़िया जी, वो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं। तो बेसिकली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, तो वही वाली बात है कि जब 3 डेट आई थी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं। तो वो चीज मैंने एग्जीक्यूट की, और वो सिलसिला इच्छा का सिलसिला था, और वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा कंटिन्यू हो गया, तो अभी वो सिलसिला बरकरार है।
1: चलिए बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि बचपन से ही फिल्म्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, ये पैशन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई?
2: बचपन में सर मैं डांस करता था, और मेरा ये मानना था, हाँ ये मानना था कि एक्टर जो होता है ना, जो फिल्म में पर्दे पे हम हीरो को देखते थे, उसकी लैंग्वेज मुझे ये पता थी कि डांस जो करता है वो हीरो होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर मुझे पता चला कि थिएटर ग्रुप है, थिएटर होता है, प्लेज होते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट में एक्टिंग बहुत मायने रखती है, सिर्फ डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बनते हो। तो फिर मैंने जयपुर के रविंद्र मंच है वहां पे एक नाट्य कार्यशाला हो रही थी Under 20 age की, तो मैंने ज्वाइन की थी। वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी चीज लगती है सर देखने में एक्टिंग, और सबसे टफ वही होती है। तो वही है कि पैशन तो बचपन से मुझे डांस के थ्रू था, कि आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था बचपन से. तो उस बिहाफ पे मेरा वो इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. पता था नहीं कि क्या होता है कैसे होता है चीजें, ठीक है. धीमे धीमे वो है कि थिएटर में गया, थिएटर से बारीकियां सीखने की कोशिश की और फिर पता चला कि एक्टिंग क्या चीज होती है और फिर धीमे धीमे एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया.
1: तो आपकी मतलब स्टेज से भी आपका जुड़ाव रहा है जयपुर में, इसका तो ये मतलब है. तो आप पुराने लोग हैं, सरताज माथुर, ईश्वर दत्त और इन सबको जानते होंगे.
2: बिल्कुल, मैं पर्सनली तो जानता ही हूँ. बाकी का साबिर खान सर है जयपुर से.
1: अच्छा, हाँ साबिर खान.
2: हाँ हाँ, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है. वो एक वर्कशॉप थी, फिर उसमें प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन किया. फिर काफी चीजें सीखी वहां से, फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखा. इवन जो साबिर सर हैं, मैं उनको हमेशा ये थैंक यू बोलता हूँ कि जो कास्टिंग का भी जो प्रोसेस है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर है, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है कि वो अच्छे एक्टर की बजाय ना अच्छे कैरेक्टर ढूंढते हैं किसी एक्टर को, ठीक है. तो वो ही एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस होता है. तो मैंने जब मैं थिएटर कर रहा था उसी दरमियान मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर हो. उस कैरेक्टर के लिए बेहतरीन एक्टर कौन हो सकता है ना, जिसमें वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिट बैठता हो. तो वही कास्टिंग की बेसिकली एक लीनियर लाइन जो होती है ना, उसमें हम लोग एक्टर कास्ट नहीं करते हैं अच्छे, हम अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते हैं.
1: अच्छा,
2: तो वो मुझे वहां से वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आज धीमे धीमे मैं अपने प्रोसेस में वर्कआउट कर रहा हूँ. तो इसीलिए थिएटर मेरे लिए जिंदगी में मतलब एक बेस जो है ना, वो थिएटर ही रहा है और उसी के बिहाफ पे इतना कॉन्फिडेंस है और जो चीजें चल रही है प्रोफेशनली वो उसी बिहाफ पे है.
1: ये फायदा आपने बहुत अच्छा बताया. तो अच्छा ये बताइए, मुंबई आप कैसे पहुंचे? क्या आप भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आए थे या शुरुआत से ही था कि भाई बिहाइंड द कैमरा ही मुझे काम करना है, यही मेरा इंटरेस्ट है? ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी बॉम्बे वाली?
2: जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से कैमरा एक्टिंग अकेडमी है कि जो कैमरे एक्टिंग की अकेडमी में जो सिखाते है ना, वो आप कास्टिंग की प्रोसेस में सीखते हो. क्योंकि हम हर दिन 50 लोगों के ऑडिशंस देखते हैं, अच्छे एक्टर के, बुरे एक्टर के, नए एक्टर के, पुराने एक्टर के, बड़े एक्टर के, हर तरीके के लोगों के 50 वेरिएशन देखते हैं हम लोग.
1: अच्छा,
2: हम लोग उस जजमेंट पे होते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है. जो बेहतर एक्टर है उनसे भी हम ये बात करते हैं कि यार और बेहतर हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिंग की समझ है ना कि कैमरा क्या क्या चाहता है, वो आपको समझ में आ जाती है. और जब वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है कि कैमरा क्या चाहता है, तो जब आप खुद एज एन एक्टर काम करते हो ना, तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो उस समय तक झाल चुके होते हो उस प्रोसेस में कास्टिंग की, अदरवाइज आपको ये पता होता है कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है. मैं जो चाह रहा हूं सिर्फ वही नहीं हो सकता, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसका पैटर्न क्या है उस स्टोरी का, वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, मेरा वॉइस टेक्सचर कैसा रहेगा, मेरी लैंग्वेज कैसी रहेगी, मेरी क्लास कैसा रहेगा. उस सारी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे कास्टिंग प्रोसेस में काम करते करते आई. और मुझे ये लगता है कि मैंने पैरेलल एज एन एक्टर भी सर काम किया है, तो मुझे उस चीज में बड़ी हेल्प मिली है. कि शुरुआती दौर था जब मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ना थिएटर में, तो मुझे बड़ा डर रहता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोलना बहुत डर लगता था. लेकिन जब मैं कास्टिंग की प्रोसेस में बढ़ता गया, मैं कई लोगों के ऑडिशंस ले रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, फिर क्योंकि जब आप लोगों को बता रहे होते हो तो कहीं ना कहीं इनिशियली वो आपके अंदर भी वो चीज आती है कि आपको भी वो एग्जीक्यूट करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए है वो थ्योरी.
1: सही बात,
2: ठीक है. तो फिर उस वजह से मैं एक्टिंग भी कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाया जितना मैं नहीं कर सकता था पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पहले थिएटर से जुड़ा, फिर उसको मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी कास्टिंग की प्रोसेस में, एक्टिंग की प्रोसेस में, और कास्टिंग की प्रोसेस को फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्टिंग में. तो मेरे लिए चार चीजें और बेहतर हो गई.
1: भाई मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही गहरी बात बताई है और बहुत ही मजेदार बात बताई है और हमें बड़ा मजा आया सुन के। दूसरा मुझे ये लगा है कि आपका ये मतलब है कि जो कास्टिंग का काम है और एक्टिंग का काम है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये सप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
2: डेफिनेटली
1: एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसी खूबसूरत बात के पे समीर जी रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं दोनों के सप्लीमेंट के नाम पे और हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: तो वेलकम बैक समीर जी। तो आप ये बताइए कि आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको लगा कि भाई नाउ आई हैव बिकम ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसा पहला काम कौन सा किया था आप?
1: सर, मेरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला था, मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ कुछ चीजों में। तो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो टर्टल फिल्म थी, जिसको 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरा एज ए डेब्यू कास्टिंग डायरेक्टर था, डेब्यू हुआ था उससे।
0: अच्छा।
1: और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें डायरेक्टर का भी डेब्यू था, प्रोड्यूसर का भी डेब्यू था, और कितने एक्टर्स थे उनका भी डेब्यू था। और संजय मिश्रा सर थे, वो मेन लीड में थे। और अभी वो अमेजॉन प्राइम पे है वो, और Z5 दोनों पे वो रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर। राजस्थान में ही हमने शूट किया था, जो जल संकट है ना जो, और उसमें ऐसा बताया गया था कि विश्व में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जल की वजह से होगा। तो जो पानी का योगदान क्या है आपकी लाइफ में, लोगों की जनरल लाइफ में, उसको लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो फिल्म थी। तो मैं, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो फिल्म देखें और प्लीज रिव्यू कीजिए, कि आपको जरूर मजा आएगा देख करके फिल्म।
0: और संजय मिश्रा जी तो बहुत ही आला दर्जे के एक्टर भी हैं सर, वो मैं भी बहुत इम्प्रेस
1: कमाल कमाल कमाल
0: कमाल
1: कमाल
0: कमाल।
1: कमाल।
0: तो चलिए इसी बात पे, संजय मिश्रा जी की बात पे और जल संकट की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ समीर जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा अब हम आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम रुख थोड़ा सा आपके कास्टिंग डायरेक्टर के रोल पे कर लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए और फिर हम आपसे दो तीन सवाल इसी के बारे में पूछेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में।
1: तो बेसिकली सर, कास्टिंग का प्रोसेस कुछ समय पहले कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट ज्यादा उजागर हुई है। आई थिंक 15-20 साल पहले। उससे पहले कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो एक्टर्स को कास्ट करते थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि 90s की जितनी भी फिल्में थी उसमें कैरेक्टर्स में जो एक्टर्स थे बड़े सिमिलर मिलते थे आपको। ठीक है कि अगर जॉनी लीवर एक दोस्त बना हुआ है तो जॉनी लीवर दोस्त बना रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से मतलब जॉनी लीवर सर तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन और भी कई कैरेक्टर थे जो आपको अधिकतर फिल्मों में बड़ी सिमिलर से मिलेंगे कि ये भी है, ये भी है। 10 फिल्मों में
0: वकील और जज तो खास लोग ही बनते थे।
1: हाँ, फिक्स था कि ये तो पंडित ये बनेगा, ये वकील बनेगा और ये पुलिस वाला बनेगा, ये नेगेटिव करेगा। कास्टिंग जैसे ही प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हुई कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन लोगों ने नया टैलेंट सर्च करने की शुरुआत कर दी थी कि अब आप देखेंगे कि अगर 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं सिमिलर, तो 10 में एक्टर आपको मोस्टली वेरिएशन में मिलेंगे और उन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन जो भी है ना, वो भी बड़ा ही वेरिएट होने को मिलेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में उस स्क्रिप्ट के नरेशन हम लोग सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं क्रिएटिवली कि क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये शायद पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये गोरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक नहीं होते हैं कि नहीं नहीं ये काला ही होगा, गोरा भी हो सकता। तो हम लोग एक तरीके से सर वैसा है कि होता है ना कि पतंग जब जाती है ना तो माजा फेंकते हैं, तो वो माजा कौन सी पतंग में आ जाए, वो कट जाए ना, वो प्रोसेस है एक्चुअली। कि हम लोग बहुत फिक्स नहीं होते हैं कि नहीं नहीं यही एक्टर कर लेगा।
0: ओके ओके ओके,
1: ठीक है। तो हम लोग एक कैरेक्टराइजेशन एक डायरेक्टर के थ्रू हम लोग क्रिएट सुनते हैं, फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर हम लोग एक्टर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक्टर कौन है और इस डायरेक्टली लुक में पर्सनैलिटी में कौन है, फिर हम उन दोनों का कॉम्बो वर्जन देखते हैं कि किसके ऑडिशंस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एट द एंड जो डिसीजन करते हैं ना हम लोग सर, वो करते हैं ऑडिशन पे। कि कई बार हम अपने आप को हमारी मेमोरी और हमारा जो डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा साइड में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो जो ऑडिशन में होगा ना वो शाश्वत सत्य है। हम जो सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर उसने अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऑडिशंस अच्छे नहीं है, तो हम लोग उसको साइड कर देते कि नहीं नहीं यार, इस कैरेक्टर के ही अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए पहली लाइन जो बोली थी ना कि हम लोग अच्छे एक्टर नहीं, हम लोग अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते।
0: तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशंस भी आप ही लोग कंडक्ट करते हो, ये ऑडिशन का प्रोसेस आमतौर पर कैसे चलता है, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे?
1: सर, शुरुआत में तो जब डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था तो हम लोग मोस्टली ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, जो लोगों ने ऑफिस बना रखी थी कास्टिंग कंपनी ने या प्रोडक्शन हाउस ने, तो लोग आ करके ऑडिशंस देते थे।
0: अच्छा।
1: और मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफलाइन ऑडिशन ही लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली एक्टर से इंटरेक्ट होते हैं।
0: सही।
1: और जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस समझ को रखते हैं उस प्रोसेस में, तो हम लोग एक्टर को वो प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर डायरेक्टर क्या चाहता है। ठीक है, फिर हम लोग वहां से पूछते हैं कि एक्टर से कि आप क्या चाहते हो। तो जो डायरेक्टर और एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना, कि डायरेक्टर की वॉन्ट क्या है और एक्टर अपना क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं और फिर एक बेहतर ऑडिशन की तलाश में होते हैं कि वो ऑडिशन कितना खूबसूरत हो सकता है क्रिएटिवली।
0: वैसे मोटा मोटा तो आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी रोल के लिए एक्टर चुनते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? लुक्स है, एक्टिंग स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, स्क्रीन प्रेजेंस है? आपने वैसे तो मोटा मोटा बताया ही है, लेकिन अगर यूं स्पेसिफिकली पूछे तो किन चीजों पर खास ध्यान देते हैं?
1: सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कैमरा फ्रेंडली हो एक्टर, अगर वो कैमरे के लिए काम कर रहा है।
0: ओके।
1: और उसकी लैंग्वेज, जो कैरेक्टर की डिमांड क्या है ना सर, उस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी गांव का कैरेक्टर है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेसिक होगी, वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो कैरेक्टर किसी सिटी का है तो उसकी लैंग्वेज जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो एक सिटी के कैरेक्टर में होती है। तो मैटर ये करता है कि कई एक्टर को, मैं ये बात बता दूं सर पर्सनैलिटी को ही लेके, कि कई एक्टर बहुत ही बेसिक और बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशन देते हैं या कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो बहुत क्लासी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूँ सर, कि मैं कभी डायरेक्टली आंखों पे बहुत भरोसा नहीं करता। अच्छा। कई बार हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है कि यार ये शायद उस कैरेक्टर में जा रहा है बढ़िया।
0: अच्छा।
1: फिर कैरेक्टर में वो जा रहा होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर करेगा। फिर हम लोग उस कैरेक्टर में फर्स्ट लुक से हम लोग इंस्पायर होके कि यार ये इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका ऑडिशन करते हैं, फिर वो ऑडिशन में वो बेहतर करता है।
0: ओके।
1: तो हमारे लिए बेहतर एक्टर है। लेकिन आपको मैं वन लाइन में बोल दूं कि लुक बहुत मायने रखता है जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो ना। तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो आपका लुक होता है कि उस कैरेक्टर के नियर बाई आप कितना जा रहे हो।
0: हाँ, वो गांव वाला लुक है तो उसकी चेहरा अगर मोरा कुछ गांव वाला टाइप लगता है तो आपको प्रेफर करोगे आप इसके
1: लिए। देखिए ना, अभी जैसे सास बहू फ्लेमिंगो मैंने राजस्थान की कास्टिंग किया था, आर्या के तीनों सीजन मैंने राजस्थान की कास्टिंग की थी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक चेहरे कास्ट किए हैं, जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, जिनका फेस उस तरीके से वो ऑथेंटिक दिखता है कि वो मतलब रफनेस है चेहरे के अंदर। रेगिस्तान के एरिया में जो चेहरे होते हैं, कई लोग फेयर हैं, लेकिन आप देखना कि जो रेगिस्तान के आसपास जो फेयर कलर के भी लोग रहते हैं, उनकी उनके चेहरे हैं वो बड़ी ऐसे दबे हुए होते हैं, उनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए। और वो कलर उनका गोरा होगा, लेकिन वो थोड़े थोड़े डॉट्स से बने हुए, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है ना कि आपका गोरा चेहरा भी है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो एक लुक हो गया कि अगर किसी एक्टर का लुक इस तरीके का है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी ये चाहता है कि यार मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है, तो मैं मेकअप वाले को क्यों परेशान करूं।
0: ओके।
1: तो जो कास्टिंग कहीं ना कहीं जो बेहतर किया है ना कास्टिंग की प्रोसेस ने सिनेमा में, वो किया है ऑथेंटिसिटी को।
0: ऑथेंटिसिटी
1: हम लोग डायरेक्टर को ऑथेंटिक लोग पहुंचाते हैं कि सर आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसा का वैसा ही कैरेक्टर दे रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा एक्टर है।
0: यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता रहे हो आप, मतलब ये खैर वो मैं आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अच्छा ये बताइए कि आप जैसे न्यू कमर लेना है या एस्टेब्लिश्ड एक्टर लेना है, ये हालांकि आपने मोटा मोटा पहले भी बताया है, लेकिन इसमें कोई खास वो है कि
1: सर कुछ समय ऐसा होता है कि जब ओटीटी या कोई सिनेमा की बात आती है ना, तो एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर वो बजट लगा रहा है तो उसका बजट रिटर्न होना चाहिए।
0: ठीक है।
1: तो इस वजह से वो उसकी एक थ्योरी होती है कि अगर मैं इसको लूंगा तो मेरा बजट रिटर्न हो जाएगा, इसको लूंगा तो इससे बजट रिटर्न नहीं होगा। तो उस प्रोसेस में जरूर ये होता है कि हम लोग नॉन फेस जो एक्टर हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन फेस होने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वो बेहतरीन एक्टर है। क्योंकि न्यू कमर और जो नॉन फेस हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो भी कभी न्यू कमर हो रखे होते हैं।
0: हाँ सही बात है।
1: ठीक है। तो ये सिर्फ इस थ्योरी के लिए, मार्केटिंग के बिहाफ पे कहीं ना कहीं नॉन फेस बहुत मैटर करता है सर। और लेकिन कई बार कई जो डायरेक्टर हैं, कई प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनका स्पेसिफिक होता है कि यार मुझे नया एक्टर लेना है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा हो। हाँ, जैसे अगर आपने ये स्लमडॉग मिलेनियर में देखे होंगे आपने, सारे नए एक्टर मतलब शुरुआत, उससे पहले आपने बड़े पर्दे पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा जो लीड कर रहे थे।
0: हाँ, स्लमडॉग मिलेनियर में बिल्कुल नहीं थे, सब लोग नए नए थे।
1: हाँ, तो वही है कि उसकी वजह से वो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं अच्छा ऑडिशन किसको कहता हूँ कि एक्शन से लेकर के कट के बीच में जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमारे लिए अच्छा एक्टर है। उससे पहले उसने क्या किया है, कितना किया है, कितना अच्छा काम करता है, कहां से सीखा है, डजंट मीन सर। उस वक्त वो क्या परफॉर्म कर रहा है ना, वो मैटर करता है। उसी तरीके से पैरेलल जब वो सिनेमा के लिए काम कर रहा होता है, तो सिनेमा में वो उसका कैरेक्टर कैसा प्रोजेक्ट होता है, अगर वो न्यू फेस है ना, तो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं उसको कि यार नया लड़का है यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, जो विक्रम मैसी है उसने वो वाली पिक्चर,
1: विक्रम मैसी, यस यस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से वर्किंग में हूं, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो न्यू फेस, शुरुआत में उनका काम बहुत बेहतरीन रहा है। हाँ, उनको लोगों ने प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत लेट मिला है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे नवाज सर हैं, इरफान सर हैं, ये लोग सर शुरुआत से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात। हाँ, पहली लोग तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल।
1: हाँ, लोग तो बाद में बोलने लगे हैं कि अरे यार देखो इरफान साहब अब बढ़िया काम करते हैं। अरे वो भैया वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
0: बिल्कुल सही।
1: लोगों ने अब जान पाए।
0: चलिए, तो इरफान सर के नाम पे आ गया, तो कोई इरफान सर की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं यहाँ अपन रुक के।
1: ये तो बहुत खूबसूरत रहेगा।
0: बहुत अच्छा रहेगा। चलिए।

0: अब थोड़ा सा पुराने दौर की तरफ चलते हैं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल और आपने ऑथेंटिसिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता दी। तो अब ये बताइए, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार का जो दौर था और वहां से लेकर आज के ओटीटी इरा तक, कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है उस जमाने से, बताइए इसके बारे में।
1: सर, एक तो क्या है कि जो बदलाव जितने भी हुए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। सिनेमा वही रहा है, मतलब फिल्म मेकिंग की प्रोसेस वही रही है कि कितना आप चीजों को खूबसूरत प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग 1980s की फिल्में देखते हैं तो आज भी वो बहुत प्यारी लगती है, मतलब लगता है कि यार ये बिल्कुल कितने करीब है, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी उस वक्त बेहतर नहीं
0: नहीं
1: थी
0: थी
1: जितनी आज है,
0: सही।
1: लेकिन ऑथेंटिस। हाँ, तो फिल्म मेकिंग में सर सिर्फ यही है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, तो मुझे कई बार उस तरीके से डिफरेंस नहीं दिखता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस दिखता है, वरना ऑथेंटिसिटी तो सर पहले और ज्यादा बेहतर मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग थोड़ा सा उसको सुविधा मान लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी से इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहले लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि उन्हें पता है कि नेगेटिव रील है, अगर वो शूट करेंगे तो आपका टेक बेवजह नहीं जाना चाहिए, तो बेस्ट पहले से ही वो प्री रिहर्सल उनकी बेहतर होती थी। अब शायद ऐसा हो गया है कि अब उन्हें पता है कि यार मेमोरी कार्ड ही तो है, ठीक
0: अच्छा,
1: है, तो वो डिलीट हो जाएगा डेटा, तो एक
0: राइट
1: बार टेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ना एक ये है कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन ये भी है कि सुधार करने का मौका भी मिल गया है, कि एक चीज का फायदा होता है तो उसी का घाटा भी होता है सर, तो
0: राइट।
1: ये
0: और
1: है कि घाटा ही।
0: कास्टिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया ये बताइए।
1: सर, कास्टिंग प्रोसेस में तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई है कि अब हम लोग मुंबई में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया से हम लोग एक्टर्स ले सकते हैं, कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना इंट्रो भेजिए, अपना ऑडिशन वीडियो भेजिए, उनको ऑन कॉल हम समझा सकते हैं, इंस्टा के थ्रू हम
0: अच्छा,
1: लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे, लोग हमें दूर दूर से जो इंडिया के कॉर्नर पे रह रहे हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि मुंबई आना पड़े।
0: हो, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। वो वीडियो बना के भेज देते होंगे आपको। अच्छा,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से ये
0: ओके।
1: इंटरनेट की सुविधा बेहतर हुई है ना, तब से तो ऐसा हो गया है सर कि हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे मुंबई में बैठे हैं और मैं जयपुर की कई प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता हूँ, हम एक एक दिन में 20-20, 30-30 ऑडिशंस मंगा लेते हैं,
0: ओके, अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं वो सुविधा तो हुई है सर। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो बैरियर थे ना कि हर कोई मुंबई
0: हाँ,
1: नहीं आ सकता,
0: डिस्टेंस का बैरियर और टाइम का बैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल
1: वो खत्म हो गया है सर। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग और ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल एक अलग चीज हो गई जो मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्टिव हो सकते हैं ना वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, कि यार अभी मुझे सिर्फ चार एक्टर नहीं देखना मेरे कैरेक्टर के लिए, अब मैं 40 भी देख सकता हूँ, 400 भी देख सकता हूँ, 4,000 भी देख सकता हूँ, तो अब
0: बिल्कुल
1: मेरे
0: सही।
1: पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और नीट एंड क्लीन हो गया है।
0: चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी, बहुत
1: यस
0: चॉइसेस
1: यस, क्योंकि चॉइसेस
0: ऑप्शंस
1: वही है कि सिलेक्शन बेहतर तभी हो सकता है जब ऑप्शंस होंगे सर।
0: ऑप्शंस है, बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हो गए
1: हाँ,
0: आपके पास।
1: क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक मॉल खड़ा कर दिया है कि जहां आपको एक ही जगह पे सारी वैरायटी मिलेगी, आप
0: बिल्कुल, ये
1: सेलेक्ट करो
0: बड़ी
1: कि आपको चाहिए क्या।
0: बड़ी बात है। एक मॉल में जैसे हम जाके आपको मल्टी ब्रांड चीजें मिल जाती है, आपको हर चीज मिल रही है वहां वहां।
1: आप देखो ना, आप दुकान पे जाते हो, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, याद आ जाएगा तो आप दो प्रोडक्ट खरीद लोगे। आप मॉल में एक बार जाइए सर, आप खरीदने दो प्रोडक्ट जाएंगे, लेके 20 आएंगे,
0: बिल्कुल सही बात है,
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो
0: सही बात
1: सही बात है।
0: है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं आपके यहाँ तो आजकल बड़े बड़े, तो और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कास्टिंग सिस्टम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया होगा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या हो रहा है ये कॉर्पोरेट हाउसेज आने से।
1: सर वही है कि ओटीटी की वजह से यह है कि काफी वेरिएशंस आया है, कि जो आप नॉन फेस और जो न्यू फेस की बात कर रहे थे ना, कि सिनेमा में एक लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, तो उन लिमिटेड स्क्रीन में आपको लिमिटेड एक्टर्स के लिए भी वो अवेलेबल होती थी। ओटीटी ने अब ये कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर जो बेहतर एक्टर है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, उसको कम लोग जानते हैं, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर और वो एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
0: देखना, बिल्कुल सही बात।
1: मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो 10 साल पहले रिलीज हुई थी, तब उन्होंने किसी ने पूछा नहीं उनको, और लोग वापस से रिटर्न होकर के आ रहे हैं कि यार ये क्या कमाल का काम किया इन्होंने। और उन एक्टर को वापस से एक तवज्जो मिल रही है जिनको लोग कहीं ना कहीं जानते भी नहीं थे और भूल गए थे।
0: भूल गए थे
1: पसंद किए, ऑडिशंस किए। मैंने भले ही 20 लोगों के ऑडिशन किए, 50 लोगों के, मुझे उसमें से 5 लोग अच्छे लगे कि ये कैरेक्टर में बेहतर है, ठीक है, मैं उनको डायरेक्टर को दिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि यार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें बता देगा। कई बार बोलेगा यार ये 5 में से 2 अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है एक्सप्लोर। हम लोग वापस से एक्सप्लोर करते हैं कि फिर वापस से 20 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस से ऑडिशन करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर डायरेक्टर आगे जो चाहे प्रोड्यूसर को हो या चैनल को होता है, जैसे अभी चैनल का ओटीटी में चैनल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, कि चैनल अपनी तरफ से आप एक अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस देते हो, चैनल फिर बताता है कि नहीं नहीं यार इसमें आप सही जा रहे हो, या अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना उसको आपको चैनल को एक बार दिखाना होता है।
0: अच्छा अच्छा, ये बात।
1: तो अभी ऐसा है कि अब वो वन साइडेड कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने चाहा कि मुझे इसी एक्टर को लेना है, ठीक है, तो वो कई बार चीजें कम हो गई है। कि अब ये है कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आगे तक अच्छा ही लगेगा सब। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें फेयर हो गई हैं, कि आपके इंडिविजुअली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बोल दिया डन तो डन हो गया, नहीं होगा। हाँ, और जो जेन्युइन काम करते हैं अच्छे लोग, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इवन ये होते हैं कि वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, 8-10 लोगों की टीम के साथ, और सामने बैठ के टीवी पे या स्क्रीन पे ऑडिशन चलते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कशन होता है कि बताओ क्या, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसकी ये खासियत है, इसका पहले की ट्रेनिंग ऐसी है, ये कैरेक्टर में ऑडिशन अच्छा है, ऑडिशन के अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी 4 चीजें एड ऑन क्या है वो सारी बताता है, फिर टीम वाले बताते हैं कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छी बात बता देते हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सर एक फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं जो कोर टीम होती है उन्हीं का होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसको मैं फाइनल डिसीजन वन साइडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। मतलब डायरेक्टर कई बार हमसे भी पूछता है कि यार तुझे कौन सा लगता है जो बढ़िया कर जाए, क्योंकि तू एक्टर को ज्यादा बेहतर जानता है पर्सनली, ठीक है, तो हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर उनको पसंद करता है, उनको फाइनल करते हैं।
0: अच्छा, अभी बताइए, जैसे एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं या आप लोग एक्टिवली टैलेंट सर्च करते हैं, तो आपके पास कहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है?
1: सर ये क्या है, म्यूचुअली होता है, क्योंकि हम लोग जनरली हमारे एक नंबर प्रोवाइड होते हैं या स्टूडियो होते हैं जहाँ पे लोग रैंडमली विजिट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं।
0: प्रोफाइल भेज,
1: ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग पेज पे डालते हैं कि भाई आप हमारा नंबर ये है तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोफाइल होती है उनको हम लोग वापस से मैसेज करते हैं कि आपके लुक में एक कैरेक्टर है तो प्लीज ये डिटेल्स है, आप इसके बारे में हम जानकारी जो आपको चाहिए वो देते हैं, आप ऑफलाइन ऑडिशन देने आ सकते हो आप आ जाइए, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा सकते हैं। और किस, और वही है कि पहले कई बार एक्टर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास जो प्रोफाइल है अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, फिर हम लोग मैसेज सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, अपने कास्टिंग वालों से एक वो बोलते हैं कि यार मुझे आगरा की लैंग्वेज का एक एक्टर चाहिए, तो साइड पे कोई जानकार है क्या जो एक्टर हैं, तो इस तरीके से सर्चिंग बड़ी पैरेलल चल रही होती है सर।
0: तो अच्छा, कोई स्टोरी की इम्पोर्टेंस होती है सारे प्रोसेस में के कास्टिंग करते समय, स्टोरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है?
1: हाँ,
0: तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले कास्टिंग से पहले?
1: हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट डायरेक्टर से ही होती है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं उस पूरी स्क्रिप्ट को, और फिर हम लोग कई बार हमारी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्वेरीज होती है, हम डायरेक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं करें, क्योंकि एक्टर को भी हम लोग कन्विंस तभी कर सकते हैं ना,
0: सही बात
1: है, जब हमें उस स्टोरी के बारे में ज्यादा बेहतर बताऊं।
0: तो समीर जी काम तो बड़ी मेहनत का है आपका भाई, मैं इंप्रेस्ड, बहुत मेहनत का काम है, और फिजिकली भी मेहनत है, मेंटली भी बहुत मेहनत है, हर तरह से बहुत मेहनत है ये तो।
1: सर जब कास्टिंग चल रही होती है ना सर, उस वक्त हमें सच में नहीं पता होता, मतलब हमें भी लगता है कि एक्टर्स की भी कई शिकायतें होती हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये समझ लो सर कि हमारी वो स्थिति होती है कि जैसे शादी में दूल्हे की होती है ना स्टेज पे, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो हमारी वो दूल्हे वाली स्थिति होती है कि उस वक्त हम लोग वो नहीं कर सकते, कि हमें काम निकालना होता है, हम उस वक्त इमोशंस पे नहीं होते, तो कई बार हमें दुख भी होता है, क्योंकि एट द एंड सर ह्यूमन ही है, और मैं भी एक्टर हूं तो उस बात को और बेहतर समझता हूं।
0: कई बार ब्रश असाइड कर देते होंगे आप लोगों को, यार चलो नहीं ये नहीं है, उसका बेचारे का दिल टूटता ही होगा नेचुरली।
1: सर आप ये सोचो ना कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं एक एक दो दो दिन कई बार।

0: एक घंटा नहीं ले सकता ना सर उनसे।
1: सही बात है, सही।
0: वो उस वक्त पहले ही बोल दिया होता है कि यार सुनना मैं उस वक्त व्यस्त रहूंगा, शादी में आना ना, तू इस नंबर पे कॉल कर ले,
1: आना और खाना खाना और चले जाना।
0: हाँ हाँ मिलके जरूर जाना,
1: मिलके जरूर जाना। हाँ समीर जी, अब ये बताइए कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतना सारा ये प्रोसेस बता दिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहां आपने किसी नए टैलेंट को डिस्कवर किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंट्रोड्यूस किया हो फिल्म इंडस्ट्री को, कुछ उसके बारे में बताइए।
0: सर मेरे लिए सबसे खूबसूरती की बात यही है कास्टिंग प्रोसेस में, कि मुझे नए फेस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मेरे लिए काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, एस्टेब्लिश एक्टर है, नोन फेस है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करेगा ऑडिशन, नो डाउट, क्योंकि उसका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना है। लेकिन एक नए फेस को एक्टिंग ऑडिशन वाले प्रोसेस में कराना और डायरेक्टर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है सर। और मेरी किक एक्चुअली, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हें किक किस में मिलती है, तो मुझे किक एक नए एक्टर के साथ में अच्छा ऑडिशन कराने में कितनी मिलती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो मैं बड़ा ही मतलब एंजॉय करता हूँ। जैसे एक कटल में एक बच्ची है, अमिया नाम का कैरेक्टर है, अगर जिन्होंने भी वो फिल्म देखी हो।
1: अच्छा।
0: तो वो उसकी लाइफ का पहला ऑडिशन था और पहली बार वो एक्टिंग भी शायद 2-3 महीने पहले उसने थिएटर ज्वाइन किया था जयपुर में।
1: अच्छा।
0: और वहां पे वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रैंडमली, तो मैंने पहला ऑडिशन लिया, तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, कैमरा फ्रेंडली होना। लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार आप बिलीव करते हो कि यार लेट्स ट्राई ना, एक्सप्लोर करते हैं, दूसरा टेक लिया पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया, एट द एंड कुछ 8-10 टेक हुए थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, और वो 8-10 टेक में ये हो गया कि अब बेस्ट मिल गया है।
1: ओके ओके।
0: हाँ, और अजीब बात है कि उसके साथ में जो मैंने 4 लोगों के ऑडिशंस किए, वो लोग फाइनेस्ट एक्टर थे ऑलरेडी।
1: ओके ओके।
0: हाँ, लेकिन एक होता है ना कि एक रॉनेस जो होती है किसी एक्टर में, वो नेचुरली होती है ना, तो वो फिर आगे मैंने ऑप्शंस भेजे और फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ना, कि शायद यार इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और फाइनली ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर रहते हुए ही मुंबई से, कि जो लोग मुंबई में 5-5 साल रह के पूरी नहीं कर पाते। और अभी वो शिक्षा एंटरटेनमेंट के जो चाइल्ड सुपर स्टार्स हैं उसमें उसको काउंट किया जाता है सर।
1: सही बात है। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का पुण्य का काम है साहब, आपने मतलब एक रॉ पत्थर को तराश के हीरा बना देते हो, अगर इस तरह से कहूं।
0: मतलब बहुत दुआएं मिलती है सर, बहुत दुआएं,
1: बहुत दुआएं,
0: बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है सर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बचपन में मेरी फैमिली के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला है, दोस्तों के थ्रू बहुत प्यार मिला है, और जिस करियर में हूँ, जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है सर। प्यार के अलावा दुआएं बहुत मिलती
1: है, लोगों की आंखें भीग जाती होंगी साहब जब आप उनको ऐसा चांस देते होंगे। मैं तो
0: सर कितना अच्छा लगता है कि किसी के मैंने ऑडिशंस किए, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि यार प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का। ठीक है, कोई मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं मैं, जिसमें मैं ऑडिशन की प्रोसेस के बारे में बात करता हूं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो लोग वहां से सीख के जाते हैं और कहीं उनका 1 साल बाद 1.5 साल बाद 2 साल बाद कहीं सिलेक्शन होता है। अच्छा। फिर उनका वो पहली बार मैसेज आता है कि सर मैंने आपसे वहां से ऑडिशन का प्रोसेस सीखा, उसको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे प्रोजेक्ट मिला है सर, थैंक यू वेरी मच।
1: याद तो करते ही होंगे आपको, सही बात।
0: हाँ, तो वो वैसा है कि वो ब्लेस्ड है सच में।
1: अच्छा, अब थोड़ा सा जिस विषय पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी, कास्टिंग काउच के लेकर बहुत सारी बातें होती है, तो एज ए प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आप इस रियलिटी पे क्या कहना चाहेंगे, मिथ है, ट्रुथ है, या हाफ ट्रुथ है, या हाफ मिथ है, कुछ इसके बारे में बताएं।
0: ये उसी तरीके से है कि भगवान होते हैं, शैतान होते हैं, ठीक है, देखा किसी ने नहीं है सर। ठीक है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे रात को भगवान दिखे थे, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखा था।

0: तो यही है कि ये होता है सिर्फ मानने पे है, ठीक है, ये वही थ्योरी है। जैसे मुझे 7 साल हो गए सर, मैंने नहीं देखा कभी,
1: अच्छा
0: ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जैसे वो बच्ची को कास्ट किया था मैंने, कई सीरीज में मैंने लीड एक्टर भी कास्ट किए हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था।
1: ओके,
0: तो कहीं ना कहीं मैं जिस प्रोसेस पे चल रहा हूं ना, मैं उसी पे बिलीव करूंगा सर। और मैं लोगों को भी यही समझाता हूं कि आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। यही है कि और कई लोगों के लिए सर कास्टिंग काउच इतनी ज्यादा प्रभावी है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके बिना काम ही नहीं मिलेगा। और मैं ये बोलता हूं कि यार मैंने पिछले 5-7 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं ये तो एग्जीक्यूशन वाली बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपोल कल्पना बोल रहा हूं, कि मेरा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं कास्टिंग वाला होकर के मैं जुगाड़ लगा करके किसी का सिलेक्शन करवा रहा हूं। जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है, जानकार नहीं है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही है ना कि आप अच्छा ऑडिशन दो, आप कास्ट हो जाओगे, दैट्स इट। तो कास्टिंग काउच तो वो है कि सिर्फ होता है ना कि हर जगह चाकू के दो काम होते हैं, या तो आप उससे सलाद काट लो, सब्जी काट लो, फल काट लो, या फिर किसी का गर्दन काट लो। तो इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन सर। और मुझे तो ये लगता है कि जब भी मैं किसी नए फेस को, स्पेसिफिक लड़कियों को, मैं अगर किसी अच्छे कैरेक्टर में कास्ट करता हूँ ना सर, तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि मैंने एक एक्टर कास्ट किया है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो एक लड़की है ना, वो 5 लड़कियों को ये बताएगी कि भाई कोई कैरेक्टर पाने के लिए आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत है, आपको आपके काम के बिहाफ पे काम मिल जाएगा। और वो 5 लड़कियां और भी 5 लोगों को बताती है। तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगर कोई नया फेस है ना और वो अच्छे कैरेक्टर में जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर इस मिथ को, लोगों की जो मिथ बनी हुई है ना थ्रू आउट, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वही है कि जब आप बेहतर टैलेंट देते हो ना तो फिर सारे एक्सक्यूज साइड में हो जाते हैं सर। और आप देख लो कि आज इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं सीरीज में खासकर, वो लोग हैं जिनका इंडस्ट्री का में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सब लोग उसी तरीके के हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट है वो बहुत मायने रखता है।
1: चलिए, बहुत ही बढ़िया तरह खूबसूरती से आपने जवाब दे दिया इस ट्रिकी से सवाल का, मजा आ गया। तो अब हम करीब करीब समीर जी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो हर साल कई यंगस्टर ड्रीम्स लेकर मुंबई आते हैं, उनके लिए आपका क्या ऑनेस्ट मैसेज है? हालांकि अभी आपने बताया,
0: ऑनेस्ट मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो सके कॉन्टेक्ट बनाने की जगह क्राफ्ट पे काम कर लें, और ऑडिशन का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको जितना आप बेहतर समझ लोगे ना, कि आपको एक्टिंग आने के साथ साथ एक अच्छा ऑडिशन भी आना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं एक रोल दिलाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है एक अच्छे ऑडिशन का। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कैमरे पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे पर ही करनी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ते हो, आप थिएटर करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका कहीं ना कहीं उससे बेस क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल थिएटर करो या 5 साल बुक्स पढ़ो और उसके बाद आप सीधा कैमरे के सामने आओ और आप कुछ कमाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे सर।
1: ओके,
0: आपको पैरेलल ये सारी प्रोसेस रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस कैमरे पे भी करनी पड़ेगी अगर आपको सिनेमा के लिए काम करना है।
1: बड़ी गहरी बात कह दी आपने यार समीर जी, मजा आ गया इस बात में आपकी, मतलब ये जो मैसेज
0: है वो आपकी वाइब इतनी अच्छी है ना कि मेरे अंदर से अपने आप कुछ अच्छी बातें आप निकाल रहे हो, जैसे हम लोग एक्टर से निकालते हैं।
1: कैमरे पे एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ये काम इट इज डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मतलब भले ही आप स्टेज एक्टर कितने अच्छे हो, कितने अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप जब तक कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं हो, संजीव कुमार के लिए कहा करते थे वो एक उसमें ही जाने कितने वो कर देते थे, उसके लिए बताते थे लोग बात। बिल्कुल सही,
0: क्योंकि ये सर ये वही वाली बात है कि आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया ना तो बेस तो वही है, इंजन का बेस ही है, रेस है, क्लच है, आपको स्टार्ट कैसे करनी होती है, प्रोसेस सेम है, कार का भी सेम है, ट्रक का भी सेम, जीप का भी सेम है, लेकिन आप बाइक चला के आप कार डायरेक्टली स्पीड से नहीं चला सकते, तो आपको कार चलाने के लिए कार भी सीखना पड़ेगा बैठ कर,
1: कार भी।
0: तो वही ये है कि थिएटर जो है वो कहीं ना कहीं बेस है, वो इंजन है एक तरीके से जो आपको पावर देता है। लेकिन अगर आपको जितनी वेरिएशन की आपको गाड़ी सीखनी है तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा सर। तो वही कैमरे के ऑडिशन का प्रोसेस है कि आपको कैमरे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वर्कआउट हो पाएगा। यस
1: बिल्कुल, आपको कैमरे के सामने सहज होना, कैमरे से दोस्ती होना और कैमरा कॉन्शियस ना होना, तीनों चीजें हाँ। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट।
0: मतलब एक टैगलाइन देता हूँ सर मैं हमेशा
1: जी
0: अपनी वर्कशॉप में
1: जी,
0: कि बेसिकली कैमरा घोस्ट होता है।
1: ओके,
0: कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। जो लोग 100,000 लोगों के सामने बोलते हैं ना, जब वो कैमरे के सामने आते हैं सर, मैंने इतने लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं सर, गला सूख जाता है उनका।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो कैमरे को घोस्ट बना, घोस्ट है कैमरा, उसको जब तक आप दोस्त नहीं बनाओगे
1: वाह,
0: तब तक आपका आप एक्टिंग जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग क्या है कैमरे के लिए, जब तक वो कैमरा आपका दोस्त नहीं बनेगा ना, तब आपकी शुरुआत होगी एक्टिंग की, यार चलो अब कुछ करते हैं। तो पहले तो आपको दोस्त बनाना पड़ेगा कैमरे।
1: मजा आ गया साहब, मजा आ गया। आपके दोस्त और घोस्ट वाली बात तो बस लाख टके की बात है, यही कहूँ लाख टके की बात है। तो चलिए, मैं तो अब बस आपसे आखिरी एक छोटी सी बात कर रहा था कि अगर एक फिल्म कास्ट करनी हो समीर पहाड़िया जी को, तो रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स में आपको करेक्टर ढूंढने, टैलेंट ढूंढने आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन पे ढूंढेंगे, थिएटर ग्रुप में ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अगर आपको अपनी एक फिल्म कास्ट करनी हो तो?
0: सर मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा जब तक मुझे बेहतर ऑप्शन मिले।
1: चलिए
0: मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं कि हम लोग अपने आपके सिलेक्शन को जैसे सबको बताएंगे, थिएटर ग्रुप में जाएंगे तो थिएटर में एक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए कालबेलिया वाले लोग, तो हम लोग कालबेलिया वालों के पास जाते हैं हम लोग। जैसे कई बार वो रस्सी पे चलते हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम लोग ऐसा है कि जब तक हमें बेहतर कैरेक्टर नहीं मिल जाता ना, हम लोग हर जगह जाते हैं सर, लोगों को मैसेज करते हैं। अगर हमें आसाम का कोई एक्टर चाहिए तो आसाम का जो हमारा रिश्तेदार भी होगा ना, उससे भी हम लोग कॉल करके, जिससे हम कभी एक साल में बात नहीं करते हैं ना, उससे भी हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि और बताइए सर क्या हालचाल, बढ़िया यार, उधर कोई थिएटर वगैरह है क्या, कोई एक्टिंग वर्किंग करता है तो कोई जानकारी हो तो नंबर दो ना।
1: चलिए,
0: तो आप समझ रहे हो ना कि जितना एक्टर हमें अप्रोच नहीं करता, उससे ज्यादा हम लोग
1: अप्रोच करते हैं। मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया जी के साथ। आज हमने जाना कि फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में कास्टिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां कहानी, किरदार और इंसान तीनों को जोड़ने का काम होता है। समीर जी ने यह भी बताया कि स्ट्रगल रियल है, लेकिन टैलेंट, पेशेंस और प्रोफेशनल से रास्ते बनते हैं। न्यू कमर्स के लिए उनका साफ संदेश है, ड्रीम बिग बट कम प्रिपेयर्ड। हम उम्मीद करते हैं आज की बातचीत आपको फिल्म इंडस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मैं समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की।
0: सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब मेरे अंदर जो इतनी सारी चीजें थी ना, उनको आपने बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है, तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जितना आप बेहतर से जी सकते हो जी लो, क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए।
1: चलिए चलिए, तो अगर आप भी एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो याद रखिए, सही टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता, बस सही मौका और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ, तब तक सपने देखते रहिए, मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
2: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
3: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
2: हाँ?
3: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।
4: नवम्बर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
4: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो,
5: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
6: पापा, मैंने, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
5: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
6: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
5: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
6: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
5: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
1: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
4: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, 7 बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद,
1: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
4: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरी कॉम यानी MC मैरी कॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
1: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरी कॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
4: गरीब परिवार होने के कारण मैरी कॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठी बैठी बैठी।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी, जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ, मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मैरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
2: वजन कम करने की चुनौती को मैरीकॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरीकॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
3: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
2: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
1: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
2: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजेय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतियाँ यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
8: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
7: आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं।
6: यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा।
7: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
7: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था। इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
8: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
6: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
7: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
6: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
8: नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते बेटा।
8: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
9: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
8: ओह।
9: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
8: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
9: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
8: नहीं,
9: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
8: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
9: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
8: अच्छा,
9: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
8: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
9: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
8: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
9: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
10: हाँ जी बताइए।
9: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
10: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
7: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
6: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
9: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
10: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
8: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
9: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
8: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
9: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
8: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
9: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
8: क्या?
9: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
8: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
9: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो।
8: नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए।
9: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
8: नहीं।
9: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
8: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
9: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
8: यूं ही?
9: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
8: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
9: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
8: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
9: पर बेटा ये तो
8: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
9: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
8: तो यही इसकी कीमत भी है, इसकी खराब टांगे इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए, और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
9: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
8: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
7: झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
9: बेटा ये
8: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
9: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
8: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया।
9: नहीं यूजीन बेटा, देखो हम तुम हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं।
8: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार चुटलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
9: बेटा।
8: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा।

0: मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा? और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
0: आजा। अरे आजा आजा।
1: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
2: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: इंसुलिन की कहानी भाग दो।
5: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़खानों में ले गई, जहां मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
6: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
7: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
8: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
7: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है। उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
8: वेरी गुड।
7: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
8: कौन सी समस्या?
7: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
8: डॉक्टर बेंटिंग, पतझड़ का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
7: अच्छा, वो कौन है सर?
8: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
7: अच्छा।
8: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में PhD की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
7: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
8: कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
7: जी सर।
8: उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में।
7: जी सर।
8: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
7: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
8: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
7: जरूर।
8: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
7: बिल्कुल सर।
8: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
7: धन्यवाद।
8: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
7: आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
5: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
6: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल ये था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
9: मैंने कर दिखाया।
7: कॉलिप शाबाश।
9: थैंक यू।
7: मुबारक हो। ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
9: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
7: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका, मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण।
9: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
7: हाँ, जरूर आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
9: जी जी, शुक्रिया।
5: बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर? अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
6: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग,
3: अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
2: बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूं। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
3: जोसेफ हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
3: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
2: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
3: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
2: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
3: हाँ।
2: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
3: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
2: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
3: नहीं,
2: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
3: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉमसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का, पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया,

0: डॉक्टर जेफरी।
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग।
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया। लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह।
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
0: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
3: मेरे दोस्त, तुम्हारी

0: कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई। उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
1: बेंटिंक।
2: हाँ जोसेफ।
1: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
2: शुक्रिया।
1: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
2: अरे इसमें धन्यवाद कैसा। तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
1: कोई बात नहीं दोस्त,
2: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
2: अरे अरे आओ बेस्ट।
3: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
2: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
3: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
2: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
3: जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
2: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ऑन्टारियो में पहुंच रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
3: जी,
2: अपना ख्याल रखना।

0: डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच जोसेफ?
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओह जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ। अच्छा, मैं भी चाहूंगा तुमसे मिलने का। हाँ,
1: जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोड ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का

0: शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियॉट को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर ये खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियॉट के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
2: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूं सर, जानता हूं, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियॉट। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर के लॉ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे, और ये बेस्ट थे सर जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे, शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
2: डॉक्टर बेंटिंग, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूँ। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूँ सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंग पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंग ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंग ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंग की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैकलियॉट ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली।
3: कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंग को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
0: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।

जय जवान जय किसान जय विज्ञान। कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर अलीराजपुर। मारा सभी किसान भाइयों का जय राम राम। मार सब किसान भाइयों शामिल अपनी जी प्राकृतिक खेती छे इन्हीं खेती मा फसल उगाड़ी बनाने वाटे जो अपनो साधन काम में ले दे जो घर ही उपयोग कर मंडिया बाजार से ढूंढी ले जो कम लागत मा खेती से सबसे

0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाए, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों, कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत उबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो। और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।

पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवच नासी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं कि सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नज़दीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहाँ पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, चूंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रबी की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्टी।
4: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी, अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो श्रिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है। तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
3: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
2: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
1: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या मुकादिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपनी बात है।
3: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
5: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए। तो
3: वही PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
6: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाज सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रो ग्रीन्स का हमारा है, माइक्रो ग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रो ग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: आइए सुनते हैं अपनी ही संस्कृति का एक और सुंदर गाना।

0: तो
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम, और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो, और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

Chegar.

0: या रोकेड।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक खास महफिल जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तनुषा तरानो के हम सफर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उन सफरों की जो सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं होते, बल्कि हिम्मत, बदलाव और खुद को पहचानने की कहानियां होते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ को एक नई दिशा दी, भावना जुनेजा जी, ग्लोबल CEO ऑफ इंफिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हजारों लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट।
2: भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
3: पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सो थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हर गेस्ट को हम उनके बचपन में लेके जाते हैं। भावना जी, आपका बचपन एक सिंगल मदर के साथ गुजरा और आप खुद को एक बहुत शाय, एक बहुत रिजर्व्ड, एक सेल्फ कॉन्शियस लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं आज, तो आपके जीवन में वो कौन सा पल था, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये महसूस किया कि इस डर के आगे आपकी असली पहचान छुपी है, आप जो एक्चुअल में है वो छुपा है?
3: पहले तो मैं ये कहूंगी कि भाई, आपको मालूम है इंडियन सोसाइटी में एक सिंगल मदर अपने बच्चों को रेज कर रही है, वो भी लेट यू नो अर्ली 90s में, वो एक कोई इजी दौरान नहीं होता था उस टाइम पे वुमेन के लिए। एंड मैं ये सोचती थी कि भाई यू नो मेरी मदर क्यों मुझे इतना ज्यादा पुश करती हैं कि आप इतने शाय मत रहो। मैं सारे टाइम रोती रहती थी, अपनी मदर के पीछे रहती थी, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी, मैं बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट लड़की थी। बट एक पल ऐसा आया जब मेरे फादर ने डिसाइड करा कि अब मैं मेरी मदर के साथ नहीं रहूंगा, तो मुझे ये लगा कि भाई एक पल ऐसा आना चाहिए आपकी लाइफ में जब आपको एक वेकअप कॉल मिलती है। और मेरे लिए वो एक वेकअप कॉल थी कि जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया, कल को वो अपने बच्चों को भी छोड़ सकता है। तो आज अगर मैं सेल्फ निर्भर नहीं हुई और मेरी मदर की हेल्प से मैं वो हुई, तो मैं अगर सेल्फ निर्भर नहीं हुई तो यही होता रहेगा कि मैं सारे टाइम पीछे ही रह जाऊंगी और मैं अपना एक नाम नहीं बना पाऊंगी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक वुमन को अपनी पहचान बनानी ही पड़ेगी। जबकि मैं उस टाइम से 13 साल की थी, बट मैं

0: वेलकम बैक भावना जी।
1: थैंक यू।
0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। भावना जी, आपकी जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि आपने 18 इयर्स की एज में अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी फीट है किसी के लिए भी अचीव करना। ये किस तरह से हुआ आपके जीवन में, किस तरह से जिम्मेदारियों ने आपको घेर लिया और आपने इतनी यंग एज में अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, ये जर्नी कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: सो मैं 16 साल की थी जब मैंने ये रियलाइज करा अपनी ओल्डर सिस्टर के साथ कि अगर हम अपनी मदर को हेल्प नहीं करेंगे बाहर जाके काम करने के लिए तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो हम तीन बहनें हैं, एक सिंगल मदर, तीन बहनें, और मेरी मदर हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगी कि तुम देखना कि पीछे मुड़ के जब तुम देखोगे ना कहोगे अरे ये मैं ही हूं। तो हम लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं कि हमारी मदर ने हमें इतना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिया कि आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वो फाइनेंशियल जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थी। आप मानेंगे नहीं, उस टाइम हमारे लिए एक बैग ऑफ चिप्स हम जो लेते थे ना फ्राइडे के लिए, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी डील होती थी। और आज मैं लाखों करोड़ों में बात करती हूं, पर उस टाइम जब मैं देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह कहां से कहां हम आ गए। तो जिम्मेदारियां हमारे पर बहुत थी, हमारी छोटी बहन भी थी, हम लोगों को सोसाइटी में मेरी मदर कहती थी कि मैं तुम्हें, तुम्हारा सिर नहीं झुकने दूंगी पर तुम्हें जाके बाहर काम करना पड़ेगा। और हमने काम शुरू करा, मैंने एक जॉब शुरू करी, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई अपना बिजनेस, मैंने देखा कि मेरे अंदर एक सेल्स की बड़ी अट्रैक्शन थी, बहुत पावर थी, मुझे लोगों से बात करना अब अच्छा लगने लग गया था क्योंकि मेरी मदर ने मुझे इतना डोर टू डोर सेल्स भेजा था कि मुझे लगा कि अब तो मैं बात कर सकती हूँ। क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा, कोई ना कह देगा तो ना मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नो नहीं होता, वो एंड नहीं होता मेरे लिए। एंड का मतलब ये होता है कि एफर्ट नेवर डाइज, आप अपना एफर्ट डालते जाइए। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू करा और आप मानेंगे नहीं, मैंने अमेरिका में उस टाइम पे टेलेक्स होते थे और फैक्स होते थे, मैं फैक्स भेजती थी और एक बायर आया, उसने मेरे को आइडेंटिफाई करा, उसने एक टिश्यू पेपर पे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे को काम दूंगा। और उस दिन से फिर मेरे लिए मेरी जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज होती थी और इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग कि वो बिजनेस फिर शादी के बाद आगे मैंने अपनी मदर को पास ऑन करा और उन्होंने मेरी छोटी बहन को।
0: हाउ ब्यूटिफुल। तो आपने इतनी यंग एज में अपनी एक लेगेसी बना ली मैम, बहुत बड़ी बात है ये।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं हम आज आपसे बात करके। एंड आई एम श्योर हमारे श्रोतागण जो हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक डार्कनेस की तरफ ले जाएं। कई बार उस डार्कनेस को आप लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपनी इंस्पिरेशन से। और उसी इंस्पिरेशन के सोर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भावना जी आपकी लाइफ में आपकी मदर, जैसे आपने बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही, एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही। और मैं मानती हूं कि घर की अगर महिला स्ट्रांग है, अगर वुमन स्ट्रांग है, तो पूरा घर में वो स्ट्रेंथ डाउनलोड होती है। तो ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपके लिए, जैसे आपने बताया आपकी मदर ने आपको डोर टू डोर सेल्स के लिए भेजा बहुत यंग एज में, उससे आपने क्या क्या सीखा और आपकी मदर के साथ कुछ बिताए हुए पल, कोई स्पेशल पल अगर आज आपको याद आ रहे हैं इस इंटरव्यू के दौरान तो वो क्या होंगे, अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें।
1: आपने एक बहुत, वो कहते हैं ना, एक ऐसी कॉर्ड टच कर दी है कि क्या मुझे मेरी माँ का याद आता है। मेरी माँ तो मेरे अंदर है, वो मेरे अस्तित्व में है, वो मेरी सोल में है, और मैं आगे अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ। पर एक बात मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ का बहुत ज्यादा वजन था। आप देखेंगे इंडियन वुमेन अपने आप को शादी और बच्चों के बाद बिल्कुल अपनी टेक केयर करना ही छोड़ देती है, मेरी मदर ने भी कर दिया था। प्लस हमारे फैमिली में स्ट्रेस भी बहुत था, तीन बेटियों को बड़ा करना था इज्जत से, वो बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। पर वो सुबह उठ के शीशे के सामने अपने बाल ठीक करती थी और लिपस्टिक लगाती थी और कहती थी आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज तो मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। और ये मैं कह रही हूँ एक लेडी जो ओवर 120 kgs थी, वो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी आज भी मुझे गूसबम्स आते हैं ये बात करते वक्त। वो ये कहती थी कि भाई अपने आप को प्रेज करो, कोई तुम्हें क्यों प्रेज करे, तुम पहले अपने आप को प्रेज करो। आज हम करीना कपूर की बातें करते हैं, मैं अपनी फेवरेट थी, मैंने तो ये बचपन से देखा है अपनी मदर में कि वो अपनी फेवरेट थी
0: जी।
1: मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ थी, है और रहेगी। मेरी माँ ने ऐसी चीजें हमारे अंदर फिल करी कि भाई आप अगर हमारी फाउंडेशन देखें ना, तो कोई भी आ जाए, बस भगवान आएगा वो हिला सकता है, और कोई इंसान तो नहीं हिला पाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया है कि तुम गिरोगे तभी तुम उठने का मजा ले पाओगे, अगर तुम गिरोगे ही नहीं। और एक बहुत अच्छी लाइन मेरी मम्मी ये कहती थी कि आप हॉस्पिटल में जो मरीज होता है और इतनी सारी उसमें वो जो पाइपे और वो जो मशीन लगी होती है वो ऊपर नीचे जा रही है, लाइन मतलब जिंदा है, फ्लैट लाइन मतलब आप डेड हो, तो आपकी लाइन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। और ये मेरी लाइफ का रोलर कोस्टर जो है, जो मेरी जर्नी रही है, वो मेरी मदर की सबसे बड़ी सीख है और वो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ।
0: बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर बातें आपसे हो रही हैं। मैं इमेजिन कर सकती हूँ जब आपने ये पूरा वाक्या हमारे साथ शेयर किया, किस तरह से आपकी मदर ये करती होंगी आईने के सामने, मैं उसको इमेजिन कर सकती हूँ, और क्या शख्सियत रही होगी उनकी। आई विश हम उनको भी सुन पाते आज, बट आपके थ्रू हम उनको जान पा रहे हैं, उनकी गहराइयों में जा पा रहे हैं। और सच है कि वैलिडेशन बाहर से नहीं, सबसे पहले खुद से आना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा एक लैक की स्पेस में रहेंगे, एक लैक की स्पेस से ऑपरेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ रिश्ते हमें बनाते हैं, हमारी बुनियाद होते हैं, और उनकी सीख जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। सुनते हैं इसी बात पे हमारा अगला गीत, दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक भावना जी। मैम, आपने लाइफ अब्रॉड में स्पेंड की, काफी सारे समय आपके जीवन के अब्रॉड में गए। 21 साल की उम्र में आपने हमें बताया कि आप एक नए देश गई और 28 साल की उम्र में आप एक सिंगल मदर के रूप में दो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ आपने जीवन व्यतीत किया। आई एम श्योर ये भी बहुत डिफिकल्ट दौर रहा होगा, तो ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन का? इस पॉइंट में आपने क्या सीखे ली, क्या आपको महसूस हुए, किस तरह से आप उभरी अपनी परेशानियों से और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ी, कैसे एक्सपीरियंसेस थे ये?
1: तो जैसे एक लड़की जब भी शादी करके किसी और कंट्री में जाती है, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रही हूँ, एक वो होता है कि भाई आपकी मैरिड लाइफ बहुत प्यार वाली होगी, बहुत एक्साइटिंग होगी, फिर मेरी बेटी हुई, फिर मेरा बेटा हुआ, पर लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो ब्रेक हो गई। बट उस टाइम आपको अगर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल स्टोन हार्टेड हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अब तो लाइफ बिल्कुल खत्म है। पर जिस रात को मैं सोई हूँ और मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, मैं अपने मंदिर में गई हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए भगवान से बहुत बात करती हूँ। आज की डेट में भी मैं 51 की हो गई हूँ, फिर भी मैं रोज भगवान से अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ अपनी जर्नल में। तो मैंने भगवान को बोला कि दो बच्चे दिए हैं आपने, बच्चे हैं आपके, डेस्टिनी आपने लिखी है, और क्योंकि मैंने आपको उस थ्रोन पे बिठाया है, इसलिए मुझे तो सिर्फ आप वो स्ट्रेंथ दो कि मैं आगे बढ़ूं और इन बच्चों के लिए खूब खूब काम कर सकूं, सो दैट मैं इनको एक बहुत अच्छी लिविंग दे सकूं। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में अपनी मदर वाली स्ट्रेंथ पाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी 28 की थी जब वो सिंगल बनी और मैं भी 28 की थी जब मैं सिंगल हुई, और आप मानेंगी नहीं, मैं 13 इयर्स की थी जब ये हुआ और मेरी बेटी भी 13 इयर्स की थी। तो मेरे को तो ऐसे लगा तो जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पर वो कहते हैं ना कि आपको अपने इमोशन साइड पे करके अपने बच्चों को देखना पड़ता है, और मैंने भगवान से ऐसी एक पता नहीं एक वो अवेकनिंग मेरे में आई कि बेटी अगर मैंने एक तेरे गाल पे थप्पड़ मारा है तो तेरे हाथ पे तेरे गाल पे हाथ भी रखा है, तो इससे तू फिक्र ना कर, मैं हूँ। और उस दिन के बाद चाहे मैं गिरी हूँ, चाहे मैं उठी हूँ, चाहे मैंने काम करा है, चाहे मैंने बिजनेसेस करे हैं, मैं पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे एक घोड़ा होता है ना, उसके लेफ्ट राइट में वो आगे अपने गोल पे रखता है, सेम चीज मैंने करी है कि अपने गोल पे मैंने फोकस करा है। और आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बेटी मास्टर्स ऑफ न्यूरो साइंस है, वो हेल्थ केयर में काम करती है, मेरा बेटा बैचलर ऑफ फाइनेंस है और वो एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ काम करता है। तो मैं एक अकम्प्लिश्ड वुमन हूँ बाय गॉड्स ग्रेस।
0: अमेजिंग मैम, अमेजिंग। आपकी फेथ और रेजिलियंस इतनी ब्यूटीफुल है आपकी जर्नी में, जिस तरह का आपका विश्वास है, जिस तरह का आपका रेजिलियंट एटीट्यूड है, ये सब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गॉड का ही मिरेकल है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, ये रेजिलियंस, ये बार बार खड़े होने की शक्ति, क्योंकि हर किसी में नहीं होती और बहुत लोगों में नहीं होती। इनफैक्ट 10 में से शायद 2 कोई होते हैं जो इस तरह की रेजिलियंट एटीट्यूड के साथ बड़े होते हैं, इस फेथ के साथ बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि आपको स्ट्रांगली ये एहसास होता है कि ये सब कुछ भगवान की देन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: जैसे कहते हैं ना कि बंदिया होप फ्री है और फेथ कभी सेल पे नहीं जाता, तो मेरा भी मोटो लाइफ का यही है। और आप मानेंगे नहीं, मेरे दोनों हाथ पे टैटूज हैं, एक पे होप है और एक पे फेथ है। मैं उसी के हिसाब से अपनी लाइफ लीड करती हूँ, एंड मेरी लाइफ इज नथिंग शॉर्ट देन अ मिरेकल। एंड मैं इसीलिए ये कहती हूँ कि एवरी डे जब मैं सुबह उठती हूँ और मेरे जिस भी कंट्री में मैंने मेरा घर है वहां पर एक मंदिर जरूर होता है, मैं जाके अपना सिर झुका के कहती हूँ शुक्राना कि आपने सोचा कि मैं इस वर्थ हूँ कि मैं फिर से आज उठ सकूं, अपने बच्चों की आवाज सुन सकूं और आगे काम कर सकूं और सोसाइटी को गिव बैक कर सकूं। तो मेरी लाइफ तो होप और फेथ के साथ ही लीड होती है, और मैं जो भी मेरे आसपास हैं, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे जिनको मैं कॉर्पोरेट सर्कल में मिलती हूँ, उनको यही मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो, गिरोगे जरूर गिरोगे। लाइफ एक यू नो ब्यूटीफुल ज्वेलरी का पीस नहीं है, वो ज्वेलरी भी बनने के लिए ठोका पीटी गई, आग में से गई, तब वो जाके ज्वेलरी कहलाती है। इसीलिए उस प्रोसेस और उस जर्नी को एंजॉय करो, उस लर्निंग को एंजॉय करो। आज की डेट में हम सब थोड़े ना वो इम्पल्सिव होते हैं, हम कहते हैं अरे या तो हम हार गए या हम जीत गए। मैं ये कहती हूँ आप जीत गए बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप हार गए तो वो हार नहीं है, वो एक लर्निंग है। उसको आगे रिपीट ना करें, उससे कुछ सीखें और फिर आगे बढ़ें। तो यही मेरी सबसे भी यही मैं कहती हूँ कि भाई आगे बढ़ो पर अपनी लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सब एक प्रोसेस हैं, प्रोसेस इन मेकिंग है, तो उस हार को भी गले लगाइए और उसकी सीख को सीख के आगे बढ़िए कि क्या जिंदगी आपको सिखाना चाहती है और कैसे आपको तराश रही है। बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे हो रही हैं भावना जी। दोस्तों, जब इंसान खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास रख लेता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इसी जज्बे के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

0: भावना जी, इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका वर्क बेबी है, तो आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और क्या आपके लिए स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं उनका माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे आप ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपने बताया यूके, यूएसए, कनाडा और इंडिया में भी आप हजारों लोगों के साथ काम कर चुके हैं और उन्हें ट्रेन कर चुकी हैं, उन्हें मेंटर कर चुकी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपके वर्क बेबी इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करें प्लीज।
1: जरूर। सो इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट 10 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी में। ये यूएस में हेडक्वार्टर्ड है, हमारे बहुत और ग्लोबल ऑफिसेज हैं कनाडा, यूके, पोलैंड, इंडिया। जब मैं इंडिया में इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आई थी 3 साल पहले, तो मेरा एक विजन था कि मुझे मेट्रो सिटीज में नहीं जाना है, मुझे मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, मुझे जाना सिर्फ टीयर 2, 3, 4 सिटीज में है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भाई मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेट्रो सिटीज में आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल जाता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, आपको थोड़ा सा बात करने का लहजा, थोड़ा सा पहनावे का तमीज, सब कुछ आ जाता है, स्टोर्स ऐसे हैं, आप उधर जाके लोगों को देखते हैं। पर छोटे शहरों में प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर वो एक्सपोजर नहीं है। और मेरा एक ये विजन था और प्रण था, आप कह लीजिए, कि मैं ऐसे छोटे शहरों में ही आऊंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि उन लोगों को, उन बच्चों को मैं ट्रांसफॉर्म करूं जिनमें टैलेंट तो बहुत है पर उनमें वो कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें वो अपने आप को तराशने की कमी है। इसीलिए मैंने यहां बरेली में अपना पहला ऑफिस सेट करा, और अब हम मथुरा में कर रहे हैं, मुरादाबाद में कर रहे हैं, पानीपत में भी आगे जा रहे हैं, हम फ्रेंचाइज मॉडल भी अपना इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हैं, हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके उनके वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं। और ये सारा जो हमारा कल्चर जो हम बिल्ड करते हैं, ये सारा हमारा यूएस मेथोडोलॉजी के हिसाब से होता है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, आपको कैसे तैयार करना है रियल वर्ल्ड के लिए। आप मानेंगे नहीं, जब आप एक कॉलेज से बाहर जाते हैं ना, तो वो एक पूरा कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के लिए वो योद्धा कैसे तैयार करने हैं, मेरा फोकस उस पर रहता है। और मेरी टीम इतनी ज्यादा रिजिलियंट है और इतनी ज्यादा मेरे विजन को समझती है कि उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं पर हम काम ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो हम चार्ज करते हैं यूएस में, आपको अगर पता, अब सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कितना चार्ज करती हूँ उस एक बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, मतलब आप मानेंगे ही नहीं, जहाँ 4.5 लाख रुपए मैं यूएस में जो चार्ज करती हूँ, मैं इंडिया में छोटे शहरों में सिर्फ 5,000 रुपए चार्ज करती हूँ उस पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को छोटे शहर में ये फील ना होए कि मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपने आप को एक डायमंड बनाने के लिए। तो ये है इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि मैं आपके अंदर के उस चीज को तराश के ही रहूंगी, आपको डायमंड बना के ही रहूंगी।
0: हाउ ब्यूटिफुल मैम, हाउ ब्यूटिफुल, एंड कितना सुंदर विजन है, कितना गहरा और कितना सच्चा विजन है, कि सच में जो ऑलरेडी मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं उनको वो सब एक्सपोजर, वो एज है एक्चुअली, बट एक्चुअल नीड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स की टीयर 2, टीयर 1 सिटीज के बच्चों को है, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के बच्चों को है, जिनके पास कहीं ना कहीं सच में टैलेंट है, बस सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने का जरिया नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई कैन इमेजिन कि आपकी टीम भी आपकी तरह ही रेजिलियंट होगी, क्योंकि आपसे बात करके मैं खुद इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूं, तो आपकी जो टीम होगी वो कितना आपसे ड्रॉ करती होगी, कितना आपसे इंस्पायर होती होगी, आई कैन जस्ट इमेजिन। आगे चलते हैं और हमारे अगले और लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे एक मैसेज मैं चाहूंगी कि आप, बिकॉज आप यूथ के साथ ही डील करते हैं, तो आज के यूथ में कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक वाक्या, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपके जहन में अभी आ रहा हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें, कि किसकी, किसी की लाइफ अगर आपने छुई हो और वो ट्रांसफॉर्म हुई हो, कोई एक एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ कोई एक मैसेज यूथ के लिए, बिकॉज आप उनकी प्रॉब्लम्स एकदम एग्जैक्टली समझते हैं, इतना गहराई से आप उनके साथ डील करते हैं, इतना क्लोजली डील करते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की यूथ की। क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं और करना बहुत कुछ चाहते हैं। तो कैसे अपने आप को मनूवर करें, कैसे अपने आप को समझें और अपने पोटेंशियल को सही तरह से टैप करें, ये अगर आप हमें बता सकें।
1: ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो टॉपिक रेज करा है कि आज का जो यूथ है वो दिखाता तो है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट वो अंदर से इतना सहमा हुआ रहता है, इतना सेल्फ डाउट में रहता है, इतना उसको लगता है कि अगर मैं ज्यादा सब स्पेशली अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो आसपास वाले क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा एक क्लियर मैसेज रहता है आज के यूथ को, और मैं आपके जरिए से भी ये बोलना चाहूंगी कि जो आपको नीचे खींच रहा है वो ऑलरेडी नीचे है, आप उसके लेवल पे मत जाइए, आप अपने लेवल को देखिए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि आई कैन डू इट, आई कांट नहीं, कांट में भी कैन होता है, आई कैन डू इट, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी और आपका जो सेल्फ डाउट है वो बिल्कुल डोर से बाहर होगा। और आप मानेंगे नहीं, इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बच्चे हम लोगों को, मेरे को और मेरी टीम को मैसेजेस भेजते हैं, हमें यू नो हमें इन पर्सन आकर बोलते हैं कि आपने जो हमारे लिए करा है, जो आपने हमारे पे ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, वो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे पास होगा। मैं आपको एक स्मॉल सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़की थी, बहुत सहमी हुई थी, और ये मेरा अपने विटनेस करवे में एक लड़की है, यूपी बोर्ड से थी, बिल्कुल इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। हमारे 2 महीने के कोर्स से उसके बाद उसको हमने ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताए कि वो पूरा पूरा पेज करके स्टेज पे 1000 बच्चों के सामने एक यूनिवर्सिटी में उसने आके एक फैशन शो करा। मतलब वो इतनी प्राउड फीलिंग थी हमारे लिए, इसीलिए। और कितने और बच्चे हैं जो स्टेज पे जाके, स्पेशली स्टेज फेयर बच्चों में बहुत होता है, और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और स्टेज सिर्फ एक 4 या 5 कदम का रास्ता है, उस 4-5 कदम के रास्ते को इतना बड़ा हवा ना बनाए। उस जर्नी को हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने क्रॉस करना है। वो कुर्सी से स्टेज का जो जर्नी है वो सफर हम आपके साथ तय करेंगे। ऐसे कितने ही हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग देते हैं, और मैं हमेशा उन बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि पैसा कमाना आसान है, ब्लेसिंग कमाना बहुत मुश्किल है, और आप जो ब्लेसिंग हमें देते हैं उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो मैं कहूंगी जितने भी बच्चे हैं जो अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं, आइए इन्फिनिटी आपको एक उस मुकाम पे लेकर जाएगा जो आप एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयबल पर्सन बन पाएंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी खूबसूरत बातचीत, तो बहुत ही क्लियर विजन है आपका और बहुत इंस्पायरिंग विजन है मैम आपका। आपसे बात करके ही लाइक आई सेड कि बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, जिससे मैं भी इंस्पायर हुई हूं और जो हमें सुन रहे हैं वो जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि जीवन में जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पका पकाया एनवायरमेंट मिले, सब कुछ सही मिले, बट आप अपने एफर्ट से, अपनी कॉन्शियस चॉइसेस से अपने जीवन को इस मुकाम पे ला सकते हैं कि आप अपना बेस्ट पोटेंशियल टैप कर सकें और उसे अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच भावना जुनेजा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर रंग के पीछे एक कहानी जरूर होती है और हर कहानी के पीछे एक हिम्मत भी जरूर होती है। आज की महफिल में हमने हमारे साथ भावना जी की सोच, उनके जज्बे को शेयर किया, जिन्होंने हमें ये याद दिलाया कि डर, संघर्ष और जिम्मेदारी, ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग, गीतों के संग अपनी आरजे तनुषा तरानों की हमसफर के साथ। फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ, एक नए सफर के साथ। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: ભાવના આપણ હંગલા ભાઈઓનું ઘરું ઘરું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબવાના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો 90.8 એફએમ

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है बॉलीवुड का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो पर्दे पर दिखते नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम जिनका काम है सही चेहरे को सही किरदार तक पहुंचाना, कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया। समीर जी ने फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो,

0: तैयार हो जाइए एक बिहाइंड द सीन्स जर्नी के लिए, जहां हम समझेंगे फिल्मों की दुनिया का वो पहलू जो दिखता कम है लेकिन बनाता बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम समीर पहाड़िया जी।
1: थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और सभी जितने भी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज सर कंटिन्यू।
0: तो समीर जी बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। बचपन कहाँ बीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी की, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: तो सर ऐसा है कि मेरी जो बचपन की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें टीचर की फैमिली है। मेरे पिताजी बेसिकली
0: अच्छा,
1: रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट
0: अरे वाह,
1: के, तो
0: अच्छा
1: उनसे वो बचपन से ही हमें जो संस्कार और जो थ्योरी है ना, जो एक जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की, वो उनसे मिली है। पूरा घर का माहौल भी वही है कि मेरे बड़े भैया हैं जगदीश पाड़िया जी, वो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं। तो बेसिकली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, तो वही वाली बात है कि जब 3 इडियट आई थी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं।
0: जी
1: तो वो चीज मैंने एग्जीक्यूट की, और वो सिलसिला इच्छा का सिलसिला था, और वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा कंटिन्यू हो गया, तो अभी वो सिलसिला बरकरार है।
0: चलिए बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि बचपन से ही फिल्म्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, यह पैशन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई?
1: बचपन में सर मैं डांस करता था, और मेरा ये मानना
0: ओके,
1: था, हाँ ये मानना था कि एक्टर जो होता है ना, जो फिल्म में पर्दे पे हम हीरो को देखते थे, उसकी लैंग्वेज मुझे ये पता थी कि डांस जो करता है वो हीरो होता है, ठीक है।
0: ओके,
1: लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर मुझे पता चला कि एक थिएटर ग्रुप है, थिएटर होता है, प्लेज होते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट में एक्टिंग बहुत मायने रखती है, सिर्फ डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बनते हो। तो फिर मैंने जयपुर के रविंद्र मंच है वहां पे एक नाट्य कार्यशाला हो रही थी अंडर 20 एज की, तो मैंने ज्वाइन की थी। वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे इजी चीज लगती है सर देखने में एक्टिंग, और सबसे टफ वही होती है। तो वही है कि पैशन तो बचपन से मुझे डांस के थ्रू था, कि आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें ना, तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था बचपन से, तो उस बिहाफ पे मेरा वो इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। पता था नहीं कि क्या होता है कैसे होता है चीजें, ठीक है। धीमे धीमे वो है कि थिएटर में गया, थिएटर से बारीकियां सीखने की कोशिश की, और फिर पता चला कि एक्टिंग क्या चीज होती है, और फिर धीमे धीमे एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया।
0: तो आपकी मतलब स्टेज से भी आपका जुड़ाव रहा है जयपुर में, इसका तो ये
1: बिल्कुल
0: मतलब था। तो आप
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं
0: पुराने लोग हैं, सरताज माथुर, ईश्वर दत्त और इन सबको जानते होंगे बिल्कुल अच्छी तरह।
1: बिल्कुल मैं पर्सनली तो जानता ही हूँ, बाकी का साबिर
0: अच्छा,
1: खान सर हैं जयपुर से,
0: हाँ साबिर खान
1: उनके
0: है ना
1: मैं,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है, तो एक वर्कशॉप थी, फिर उसमें प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन किया, फिर काफी चीजें सीखी वहां से, फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखा। इवन जो साबिर सर हैं, मैं उनको हमेशा ये थैंक यू बोलता हूँ कि जो कास्टिंग का भी जो प्रोसेस है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर है, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है कि वो अच्छे एक्टर की बजाय ना अच्छे कैरेक्टर ढूंढते हैं किसी एक्टर को, ठीक है। तो वो ही एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस होता है। तो मैंने जब मैं थिएटर कर रहा था, उसी दरमियान मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर हो, उस कैरेक्टर के लिए बेहतरीन एक्टर कौन हो सकता है ना, जिसमें वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिट बैठता हो। तो वही कास्टिंग की बेसिकली एक लीनियर लाइन जो होती है ना, उसमें हम लोग एक्टर कास्ट नहीं करते हैं अच्छे, हम अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते हैं। तो
0: अच्छा,
1: वो मुझे वहां से वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया, और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आज धीमे धीमे मैं अपने प्रोसेस में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इसीलिए थिएटर मेरे लिए जिंदगी में मतलब एक बेस जो है ना, वो थिएटर ही रहा है और उसकी के बिहाफ पे इतना कॉन्फिडेंस है और जो चीजें चल रही हैं।

0: प्रोफेशनली वो उसी बिहाफ पे एंटर करते हैं।
1: नहीं ये फायदा आपने बहुत अच्छा बताया। तो अच्छा ये बताइए बॉम्बे मुंबई आप कैसे पहुंचे, क्या आप भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आए थे या शुरुआत से ही था कि भाई बिहाइंड द कैमरा ही मुझे काम करना है यही मेरा इंटरेस्ट है, ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी बॉम्बे वाली?
0: जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो एक तरीके से कैमरा एक्टिंग अकेडमी है कि जो कैमरे एक्टिंग की अकेडमी में जो सिखाते है ना वो आप कास्टिंग की प्रोसेस में सीखते हो, क्योंकि हम हर दिन 50 लोगों के ऑडिशंस देखते हैं, अच्छे एक्टर के, बुरे एक्टर के, नए एक्टर के, पुराने एक्टर के, बड़े एक्टर के, हर तरीके के लोगों के 50 वेरिएशन देखते हैं हम लोग।
1: अच्छा
0: हम लोग उस जजमेंट पे होते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है, जो बेहतर एक्टर है उनसे भी हम ये बात करते हैं कि यार और बेहतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिंग की समझ है ना कि कैमरा क्या क्या चाहता है वो आपको समझ में आ जाती है, और जब वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है कि कैमरा क्या चाहता है, तो जब आप खुद एज एन एक्टर काम करते हो ना तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो उस समय तक झाल चुके होते हो उस प्रोसेस में कास्टिंग की, अदरवाइज आपको ये पता होता है कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है, मैं जो चाह रहा हूं सिर्फ वही नहीं हो सकता, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसका पैटर्न क्या है उस स्टोरी का, वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, मेरा वॉइस टेक्सचर कैसा रहेगा, मेरी लैंग्वेज कैसी रहेगी, मेरी क्लास कैसा रहेगा, वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे कास्टिंग प्रोसेस में काम करते करते आई। और मुझे ये लगता है कि मैंने पैरेलल एज एन एक्टर भी सर काम किया है, तो मुझे उस चीज में बड़ी हेल्प मिली है कि शुरुआती दौर था जब मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ना थिएटर में, तो मुझे बड़ा डर रहता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोलने में बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं कास्टिंग की प्रोसेस में बढ़ता गया मैं कई लोगों के ऑडिशंस ले रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, फिर क्योंकि जब आप लोगों को बता रहे होते हो तो कहीं ना कहीं इनिशियली वो आपके अंदर भी वो चीज आती है कि आपको भी वो एग्जीक्यूट करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए है वो थ्योरी।
1: सही बात
0: ठीक है। तो फिर उस वजह से मैं एक्टिंग भी कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाया जितना मैं नहीं कर सकता था पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पहले थिएटर से जुड़ा, फिर उसको मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी कास्टिंग की प्रोसेस में, एक्टिंग की प्रोसेस में, और कास्टिंग की प्रोसेस को फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्टिंग में, तो मेरे लिए चार चीजें और बेहतर हो गई।
1: भाई मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही गहरी बात बताई है और बहुत ही मजेदार बात बताई है और हमें बड़ा मजा आया सुन के। दूसरा मुझे ये लगा है कि आपका ये मतलब है कि जो कास्टिंग का काम है और एक्टिंग का काम है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये सप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है,
0: डेफिनेटली
1: एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी खूबसूरत बात के पे समीर जी रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं दोनों के सप्लीमेंट के नाम पे, और हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: तो वेलकम बैक समीर जी। तो आप ये बताइए कि आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको लगा कि भाई नाउ आई हैव बिकम ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसा पहला काम कौन सा किया था आप?
1: सर, मेरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला था, मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ कुछ चीजों में। तो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो टर्टल फिल्म थी, जिसको 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरा एज ए डेब्यू कास्टिंग डायरेक्टर था, डेब्यू हुआ था उससे। और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें डायरेक्टर का भी डेब्यू था, प्रोड्यूसर का भी डेब्यू था, और कितने एक्टर्स थे उनका भी डेब्यू था। और संजय मिश्रा सर थे, वो मेन लीड में थे। और अभी वो अमेजॉन प्राइम पे है वो, और Z5 दोनों पे वो रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर। राजस्थान में ही हमने शूट किया था, जो जल संकट है ना जो, और उसमें ऐसा बताया गया था कि विश्व में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जल की वजह से होगा। तो जो पानी का योगदान क्या है आपकी लाइफ में, लोगों की जनरल लाइफ में, उसको लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो फिल्म थी। तो मैं, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो फिल्म देखें और प्लीज रिव्यू कीजिए कि आपको जरूर मजा आएगा देख करके।
0: और संजय मिश्रा जी तो बहुत ही आला दर्जे के एक्टर भी हैं सर, वो मैं भी बहुत इम्प्रेस। तो चलिए इसी बात पे, संजय मिश्रा जी की बात पे और जल संकट की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ समीश जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा अब हम आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम रुख थोड़ा सा आपके कास्टिंग डायरेक्टर के रोल पे कर लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए और फिर हम आपसे दो तीन सवाल इसी के बारे में पूछेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में।
1: तो बेसिकली सर, कास्टिंग का प्रोसेस कुछ समय पहले कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट ज्यादा उजागर हुई है। आई थिंक 15-20 साल पहले। उससे पहले कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो एक्टर्स को कास्ट करते
0: जी
1: थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि 90s की जितनी भी फिल्में थी उसमें कैरेक्टर्स में जो एक्टर्स थे बड़े सिमिलर मिलते थे आपको। ठीक है कि अगर जॉनी लीवर एक दोस्त बना हुआ है तो जॉनी लीवर दोस्त बना रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से मतलब जॉनी लीवर सर तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन और भी कई कैरेक्टर थे जो आपको अधिकतर फिल्मों में बड़ी सिमिलर से मिलेंगे कि ये भी है, ये भी है। 10 फिल्मों में उनके सेम कैरेक्टर मिले।
0: वकील और जज तो खास लोग ही बनते थे।
1: हाँ, फिक्स था कि ये तो पंडित ये बनेगा, ये वकील बनेगा और ये पुलिस वाला बनेगा, ये नेगेटिव करेगा। कास्टिंग जैसे ही प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हुई कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन लोगों ने नया टैलेंट सर्च करने की शुरुआत कर दी थी कि अब आप देखेंगे कि अगर 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं सिमिलर, तो 10 में एक्टर आपको मोस्टली वेरिएशन में मिलेंगे और उन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन जो भी है ना वो भी बड़ा ही वेरिएट होने को मिलेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में उस स्क्रिप्ट के नरेशन हम लोग सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं क्रिएटिवली कि क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये शायद पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये गोरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक नहीं होते हैं कि नहीं नहीं ये काला ही होगा, गोरा भी हो सकता। तो हम लोग एक तरीके से सर वैसा है कि होता है ना कि पतंग जब जाती है ना तो माजा फेंकते हैं, तो वो माजा कौन सी पतंग में आ जाए वो कट जाए ना, वो प्रोसेस है एक्चुअली। कि हम लोग बहुत फिक्स नहीं होते हैं कि नहीं नहीं यही एक्टर कर लेगा।
0: ओके ओके ओके,
1: ठीक है। तो हम लोग एक कैरेक्टराइजेशन एक डायरेक्टर के थ्रू हम लोग क्रिएट सुनते हैं, फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर हम लोग एक्टर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक्टर कौन है और इस डायरेक्टली लुक में पर्सनैलिटी में कौन है, फिर हम उन दोनों का कॉम्बो वर्जन देखते हैं कि किसके ऑडिशंस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एट द एंड जो डिसीजन करते हैं ना हम लोग सर, वो करते हैं ऑडिशन पे। कि कई बार हम अपने आप को हमारी मेमोरी और हमारा जो डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा साइड में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो जो ऑडिशन में होगा ना वो शाश्वत सत्य है। हम जो सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर उसने अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऑडिशन अच्छे नहीं है, तो हम लोग उसको साइड कर देते कि नहीं नहीं यार, इस कैरेक्टर के ही अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए।
0: बड़ी गहरी बात है भाई।
1: हाँ, पहली लाइन जो बोली थी ना कि हम लोग अच्छे एक्टर नहीं, हम लोग अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते।
0: तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन भी आप ही लोग कंडक्ट करते हो, ये ऑडिशन का प्रोसेस आमतौर पर कैसे चलता है, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे।
1: सर शुरुआत में तो जब डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था तो हम लोग मोस्टली ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, जो लोगों ने ऑफिस बना रखी थी कास्टिंग कंपनी ने या प्रोडक्शन हाउस ने, तो लोग आ करके ऑडिशंस देते थे।
0: अच्छा।
1: और मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफलाइन ऑडिशन ही लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली एक्टर से इंटरेक्ट होते हैं।
0: सही।
1: और जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस समझ को रखते हैं उस प्रोसेस में, तो हम लोग एक्टर को वो प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर डायरेक्टर क्या चाहता है। ठीक है, फिर हम लोग वहां से पूछते हैं कि एक्टर से कि आप क्या चाहते हो। तो जो डायरेक्टर और एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना, कि डायरेक्टर की वॉन्ट क्या है और एक्टर अपना क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं और फिर एक बेहतर ऑडिशन की तलाश में होते हैं कि वो ऑडिशन कितना खूबसूरत हो सकता है क्रिएटिवली।
0: वैसे मोटा मोटा तो आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी रोल के लिए एक्टर चुनते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? लुक्स है, एक्टिंग स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, स्क्रीन प्रेजेंस है? आपने वैसे तो मोटा मोटा बताया ही है, लेकिन अगर यूं स्पेसिफिकली पूछे तो किन चीजों पर खास ध्यान देते हैं?
1: सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कैमरा फ्रेंडली हो एक्टर, अगर वो कैमरे के लिए काम कर रहा है।
0: ओके।
1: और उसकी लैंग्वेज, जो कैरेक्टर की डिमांड क्या है ना सर, उस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी गांव का कैरेक्टर है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेसिक होगी, वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो कैरेक्टर किसी सिटी का है तो उसकी लैंग्वेज जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो एक सिटी के कैरेक्टर में होती है।
0: अच्छा,
1: तो मैटर ये करता है कि कई एक्टर को, मैं ये बात बता दूं सर पर्सनैलिटी को ही लेके, कि कई एक्टर बहुत ही बेसिक और बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशंस देते हैं या कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो बहुत क्लासी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूं सर, कि मैं कभी डायरेक्टली आंखों पे बहुत भरोसा नहीं करता। कि कई बार हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है कि यार ये शायद उस कैरेक्टर में जा रहा है बढ़िया।
0: अच्छा,
1: सिर्फ कैरेक्टर में वो जा रहा होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर करेगा। फिर हम लोग उस कैरेक्टर में फर्स्ट लुक से हम लोग इंस्पायर होते कि यार ये इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका ऑडिशन करते हैं, फिर वो ऑडिशन में वो बेहतर करता है।
0: ओके।
1: तो हमारे लिए बेहतर एक्टर है। लेकिन आपको मैं वन लाइन में बोल दूं कि लुक बहुत मायने रखता है जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो ना। तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो आपका लुक होता है कि उस कैरेक्टर के नियर बाई आप कितना जा रहे हो।
0: हाँ, वो गांव वाला लुक है तो उसकी चेहरा अगर मोरा कुछ गांव वाला टाइप लगता है तो आपको प्रेफर करोगे आप इसके
1: लिए। देखिए ना, अभी जैसे सास बहू फ्लेमिंगो मैंने राजस्थान की कास्टिंग किया था, आर्या के तीनों सीजन मैंने राजस्थान की कास्टिंग की थी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक चेहरे कास्ट किए हैं, जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, जिनका फेस उस तरीके से वो ऑथेंटिक दिखता है कि वो मतलब रफनेस है चेहरे के अंदर। ये रेगिस्तान के एरिया में जो चेहरे होते हैं, कई लोग फेयर हैं, लेकिन आप देखना कि जो रेगिस्तान के आसपास जो फेयर कलर के भी लोग रहते हैं, उनकी उनके चेहरे हैं वो बड़ी ऐसे दबे हुए होते हैं, उनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए, और वो कलर उनका गोरा होगा, लेकिन वो थोड़े थोड़े डॉट्स से बने हुए, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है ना कि आपका गोरा चेहरा भी है ना थोड़ा सा वो जाता है। तो वो एक लुक हो गया कि अगर किसी एक्टर का लुक इस तरीके का है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी ये चाहता है कि यार मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है, तो मैं मेकअप वाले को क्यों परेशान करूं।
0: ओके।
1: तो जो कास्टिंग कहीं ना कहीं जो बेहतर किया है ना कास्टिंग की प्रोसेस ने सिनेमा में, वो किया है ऑथेंटिसिटी को।
0: ऑथेंटिसिटी
1: हम लोग डायरेक्टर को ऑथेंटिक लोग पहुंचाते हैं कि सर आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है।

0: आपको लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसा का वैसा ही कैरेक्टर दे रहा हूं जो कि एक बहुत अच्छा एक्टर है।
1: यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता रहे हो आप, मतलब
0: yes.
1: खैर वो मैं आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अच्छा ये बताइए कि आप जैसे न्यू कमर लेना है या एस्टेब्लिश्ड एक्टर लेना है, ये हालांकि आपने मोटा मोटा पहले भी बताया है लेकिन इसमें कोई खास वो है कि
0: सर कुछ समय ऐसा होता है कि जब ओटीटी या कोई सिनेमा की बात आती है ना तो एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर वो बजट लगा रहा है तो उसका बजट रिटर्न होना चाहिए,
1: ठीक है।
0: तो इस वजह से वो उसकी एक थ्योरी होती है कि अगर मैं इसको लूंगा तो मेरा बजट रिटर्न हो जाएगा, इसको लूंगा तो इससे बजट रिटर्न नहीं होगा। अच्छा। तो उस प्रोसेस में जरूर ये होता है कि हम लोग नॉन फेस जो एक्टर हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन फेस होने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वो बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि न्यू कमर और जो नॉन फेस हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो भी कभी न्यू कमर हो रखे होते हैं सर।
1: हाँ सही बात है,
0: ठीक है। तो ये सिर्फ इस थ्योरी के लिए, मार्केटिंग के ध्यान पे कहीं ना कहीं नॉन फेस बहुत मैटर करता है सर। और लेकिन कई बार कई जो डायरेक्टर हैं, कई प्रोडक्शन हाउस हैं जिनका स्पेसिफिक होता है कि यार मुझे नया एक्टर लेना है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा हो। हाँ जैसे अगर आपने ये स्लमडॉग मिलेनियर में देखे होंगे, आपने सारे नए एक्टर मतलब शुरुआत उससे पहले आपने बड़े पर्दे पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा जो लीड कर रहे थे।
1: हाँ स्लमडॉग मिलेनियर में बिल्कुल नहीं थे, सब लोग नए नए थे।
0: हाँ तो वो वही है कि उसकी वजह से वो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं अच्छा ऑडिशन किसको कहता हूँ कि एक्शन से लेकर के कट के बीच में जो परफॉर्मेंस है ना वो हमारे लिए अच्छा एक्टर है। उससे पहले उसने क्या किया है, कितना किया है, कितना अच्छा काम करता है, कहां से सीखा है, डजंट मीन सर। उस वक्त वो क्या परफॉर्म कर रहा है ना वो मैटर करता है। उसी तरीके से पैरेलल जब वो सिनेमा के लिए काम कर रहा होता है तो सिनेमा में वो उसका कैरेक्टर कैसा प्रोजेक्ट होता है, अगर वो न्यू फेस है ना तो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं उसको कि यार नया लड़का है यार बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, जो विक्रम मैसी है उसने वो वाली पिक्चर
0: विक्रम मैसी यस यस तो ऐसे बहुत

0: अब थोड़ा सा पुराने दौर की तरफ चलते हैं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल और आपने ऑथेंटिसिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता दी। तो अब ये बताइए, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार का जो दौर था और वहां से लेकर आज के ओटीटी इरा तक, कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है उस जमाने से, बताइए इसके बारे में।
1: सर, एक तो क्या है कि जो बदलाव जितने भी हुए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। सिनेमा वही रहा है, मतलब फिल्म मेकिंग की प्रोसेस वही रही है कि कितना आप चीजों को खूबसूरत प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग 1980s की फिल्में देखते हैं तो आज भी बहुत प्यारी लगती है, मतलब लगता है कि यार ये बिल्कुल कितने करीब है, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी उस वक्त बेहतर नहीं
0: नहीं
1: थी
0: थी
1: जितनी आज है,
0: सही।
1: लेकिन ऑथेंटिस। हाँ, तो फिल्म मेकिंग में सर सिर्फ यही है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, तो मुझे कई बार उस तरीके से डिफरेंस नहीं दिखता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस दिखता है, वरना ऑथेंटिसिटी तो सर पहले और ज्यादा बेहतर मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग थोड़ा सा उसको सुविधा मान लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहले लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि उन्हें पता है कि नेगेटिव रील है, अगर वो शूट करेंगे तो आपका टेक बेवजह नहीं जाना चाहिए, तो बेस्ट पहले से ही वो प्री रिहर्सल उनकी बेहतर होती थी। अब शायद ऐसा हो गया है कि अब उन्हें पता है कि यार मेमोरी कार्ड ही तो है,
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा डेटा, तो
0: राइट
1: एक और टेक कर लेते हैं। तो कहीं ना
0: राइट
1: कहीं ना एक ये है कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन ये
0: राइट
1: भी है कि सुधार करने का मौका भी मिल गया है, कि एक चीज का फायदा होता है तो उसी का घाटा भी होता है सर, तो ये है
0: और
1: कि घाटा ही।
0: कास्टिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया ये बताइए।
1: सर, कास्टिंग प्रोसेस में तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई है कि अब हम लोग मुंबई में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया से हम लोग एक्टर्स ले सकते हैं, कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को कनेक्ट
0: ओहो
1: करते हैं कि भाई
0: ओहो
1: आप अपना इंट्रो भेजिए, अपना ऑडिशन वीडियो भेजिए, उनको ऑन कॉल हम समझा सकते हैं, इंस्टा
0: अच्छा
1: के थ्रू हम
0: अच्छा
1: लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे, लोग हमें दूर दूर
0: ओहो
1: से जो इंडिया के कॉर्नर पे रह रहे हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि मुंबई आना पड़े।
0: हो, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। वो वीडियो बना के भेज देते होंगे आपको। अच्छा,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से ये
0: ओके।
1: इंटरनेट की सुविधा बेहतर हुई है ना, तब से तो ऐसा हो गया है सर कि हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे मुंबई में बैठे हैं और मैं जयपुर की कई प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता हूँ, हम एक एक दिन में 20-20, 30-30 ऑडिशंस मंगा लेते हैं,
0: ओके, अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं वो सुविधा तो हुई है सर। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बैरियर थे ना कि हर कोई मुंबई
0: हाँ,
1: नहीं आ सकता,
0: डिस्टेंस का बैरियर और टाइम का बैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल
1: वो खत्म हो गया है सर। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग और ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल, एक अलग चीज हो गई जो मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्टिव हो सकते हैं ना वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, कि यार अभी मुझे सिर्फ चार एक्टर नहीं देखना मेरे कैरेक्टर के लिए, अब मैं 40 भी देख सकता हूँ, 400 भी देख सकता हूँ, 4,000 भी देख सकता हूँ, तो अब
0: बिल्कुल
1: मेरे
0: सही।
1: पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और नीट एंड क्लीन हो गया है।
0: चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी, बहुत
1: यस
0: चॉइसेस
1: यस, क्योंकि चॉइसेस
0: ऑप्शंस
1: वही है कि सिलेक्शन बेहतर तभी हो सकता है जब ऑप्शंस होंगे सर।
0: ऑप्शंस है, बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हो गए
1: हाँ,
0: आपके
1: क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक मॉल खड़ा कर दिया है कि जहां आपको एक ही जगह पे सारी वैरायटी मिलेगी,
0: पास।
1: आप
0: बिल्कुल, ये
1: सेलेक्ट करो
0: बड़ी
1: कि आपको चाहिए क्या।

0: बड़ी बात है, एक मॉल में जैसे हम जाके आपको मल्टी ब्रांड चीजें मिल जाती है, आपको हर चीज मिल रही है वहां। बिल्कुल सही बात
1: आप देखो ना, आप दुकान पे जाते हो, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, याद आ
0: बिल्कुल
1: जाएगा तो आप दो प्रोडक्ट खरीद लोगे। आप मॉल में एक बार जाइए सर, आप खरीदने दो प्रोडक्ट जाएंगे, लेके 20 आएंगे, तो
0: बीस आएंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल
1: वो
0: सही
1: सही
0: बात।
1: बात है।
0: अच्छा अब ये बताइए, जैसे कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं आपके यहाँ तो आजकल बड़े बड़े, तो और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कास्टिंग सिस्टम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया होगा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या हो रहा है ये कॉर्पोरेट हाउसेज आने से?
1: सर वही है कि ओटीटी की वजह से यह है कि काफी वेरिएशंस आया है, कि जो आप नॉन फेस और जो न्यू फेस की बात कर रहे थे ना, कि सिनेमा में एक लिमिटेड स्क्रीन है, तो उन लिमिटेड स्क्रीन में आपको लिमिटेड एक्टर्स के लिए भी वो अवेलेबल होती थी। ओटीटी ने अब ये कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर जो बेहतर एक्टर है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, उसको कम लोग जानते हैं, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर, और वो एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
0: देखना, बिल्कुल सही बात।
1: मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो 10 साल पहले रिलीज हुई थी, तब उन्होंने किसी ने पूछा नहीं उनको, और लोग वापस से रिटर्न होकर के आ रहे हैं कि यार ये क्या कमाल का काम किया इन्होंने, और उन एक्टर को वापस से एक तवज्जो मिल रही है जिनको लोग कहीं ना कहीं जानते भी नहीं थे और भूल गए थे,
0: भूल गए थे, सही।
1: पसंद किए, ऑडिशन किए। मैंने भले ही 20 लोगों के ऑडिशन किए, 50 लोगों के, मुझे उसमें से 5 लोग अच्छे लगे कि ये कैरेक्टर में बेहतर है, ठीक
0: ठीक
1: है
0: है,
1: मैं उनको डायरेक्टर को दिखाऊंगा,
0: ठीक
1: ठीक
0: है,
1: है। डायरेक्टर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि यार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें बता देगा। कई बार बोलेगा यार ये 5 में से 2 अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है एक्सप्लोर। हम लोग वापस से एक्सप्लोर करते हैं कि फिर वापस से 20 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस से ऑडिशन करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर डायरेक्टर आगे जो चाहे प्रोड्यूसर को हो या चैनल को होता है, जैसे अभी चैनल का ओटीटी में चैनल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, कि चैनल अपनी तरफ से आप एक अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस देते हो, चैनल फिर बताता है कि नहीं नहीं यार इस पे आप सही जा रहे हो, या अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना, उसको आपको चैनल को एक बार दिखाना होता है।
0: अच्छा, ये बात
1: तो
0: भी
1: अभी ऐसा है कि अब वो वन साइडेड कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने चाहा कि मुझे इसी एक्टर को लेना है, ठीक है, तो वो कई बार चीजें कम हो गई है, कि अब यह है कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आगे तक अच्छा ही लगेगा सबको। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें फेयर हो गई हैं, कि आपके इंडिविजुअली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बोल दिया डन तो डन हो गया, नहीं होगा।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो जेन्युइन काम करते हैं अच्छे लोग, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इवन ये होते हैं कि वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, 8-10 लोगों की टीम के साथ, और
0: अच्छा
1: सामने बैठ के टीवी पे या स्क्रीन पे ऑडिशन चलते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कशन होता है कि बताओ क्या, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसकी ये खासियत है, इसका पहले की ट्रेनिंग ऐसी है, ये कैरेक्टर में ये ऑडिशन अच्छा है, ऑडिशन के अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी 4 चीजें एड ऑन क्या है वो सारी बताता है, फिर टीम वाले बताते हैं कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छी बात बता देते हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सर एक फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं जो कोर टीम होती है उन्हीं का होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसको मैं फाइनल डिसीजन वन साइडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है,
0: मैं
1: कि
0: मान
1: कई बार डायरेक्ट,
0: रही हूँ, बिल्कुल कलेक्टिव सा डिसीजन बता रहे हो आप
1: हाँ हाँ मतलब डायरेक्टर
0: एक।
1: कई बार हमसे भी पूछता है कि यार तुझे कौन सा लगता है जो बढ़िया कर जाए, क्योंकि तू एक्टर को ज्यादा बेहतर जानता है पर्सनली, ठीक है, तो हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर उनको पसंद करता है, उनको फाइनल करते हैं।
0: अच्छा अब ये बताइए, जैसे एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करते हैं या आप लोग एक्टिवली टैलेंट सर्च करते हैं, तो आपके पास कहां से ये रॉ मटेरियल आता है?
1: सर ये क्या है, म्यूचुअली होता है कि हम लोग जनरली
0: अच्छा
1: हमारे एक नंबर प्रोवाइड होते हैं या स्टूडियो होते हैं जहां पे लोग रैंडमली विजिट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं,
0: प्रोफाइल बेस, ओके
1: ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग पेज पे डालते हैं कि भाई आप हमारा नंबर ये है तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोफाइल होती है उनको हम लोग वापस से मैसेज करते हैं कि आपके लुक में एक कैरेक्टर है तो प्लीज ये डिटेल्स है, आप इसके बारे में हम जानकारी जो आपको चाहिए वो देते हैं, आप ऑफलाइन ऑडिशन देने आ सकते हो, आप आ जाइए, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा सकते हैं, और किस और वही है कि पहले कई बार एक्टर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास जो प्रोफाइल है अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, फिर हम लोग मैसेज सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, अपने कास्टिंग वालों से एक वो बोलते हैं कि यार मुझे आगरा की लैंग्वेज का एक एक्टर चाहिए, तो उस साइड पे कोई जानकार है क्या जो एक्टर है, तो इस तरीके से सर्चिंग बड़ी पैरेलल चल रही होती है सर।
0: तो अच्छा, कोई स्टोरी की इम्पोर्टेंस होती है इस सारे प्रोसेस में के कास्टिंग करते समय, स्टोरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है?
1: हाँ,
0: तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले कास्टिंग से? पहले
1: हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट से ही होती है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं उस पूरी स्क्रिप्ट को।
0: अच्छा।
1: और फिर हम लोग कई बार हमारी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्वेरीज होती है, हम डायरेक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं करें, क्योंकि एक्टर को भी हम लोग कन्विंस तभी कर सकते हैं ना।
0: सही बात,
1: जब हमें उस स्टोरी के बारे में ज्यादा बेहतर बताऊं।
0: तो समीर जी, काम तो बड़ी मेहनत का है आपका भाई, मैं इंप्रेस्ड, बहुत मेहनत का काम है, और फिजिकली भी मेहनत है, मेंटली भी बहुत मेहनत है, हर तरह से बहुत मेहनत है।
1: सर जब कास्टिंग चल रही होती है ना सर, उस वक्त हमें सच में नहीं पता होता, मतलब हमें भी लगता है कि एक्टर्स की भी कई शिकायतें होती हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये समझ लो सर कि हमारी वो स्थिति होती है कि जैसे शादी में दूल्हे की होती है ना स्टेज पे, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो हमारी वो दूल्हे वाली स्थिति होती है कि उस वक्त हम लोग वो नहीं कर सकते, कि हमें काम निकालना होता है, हम उस वक्त इमोशंस पे नहीं होते, तो कई बार हमें दुख भी होता है, क्योंकि एट द एंड सर ह्यूमन ही है, और मैं भी एक्टर हूं तो उस बात को और बेहतर समझता हूं।
0: हाँ, कई बार ब्रश असाइड कर देते होंगे आप लोगों को, यार चलो नहीं ये नहीं है, उसका बेचारे का दिल टूटता ही होगा नेचुरली।
1: सर आप ये सोचो ना कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं एक एक दो दो दिन, कई बार घर वालों के जब हम खुद के इमोशंस को साइड कर रहे हैं तो फिर बाकी के इमोशंस, तो क्योंकि वो काम का है ना सर, वो हमारी काम के लिए ईमानदारी है, वो गलत है कास्टिंग डायरेक्टर का कि आप खाली बैठे हो, कोई आपके सामने से मिल रहा है, फिर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, गाने सुन रहे हो, तब आप बात नहीं करो, वो एक अलग बात है, लेकिन काम के दरमियान ऐसा होता है कि काम के दरमियान आप चाहके भी नहीं बात कर सकते, वही वाली बात है कि दूल्हे दूल्हे दूल्हा जब दूल्हे की शादी होती है ना, तो उस वक्त तो भले ही उसके कितने भी खास दोस्त हैं, वो एक घंटा नहीं दे सकता ना सर उनसे।
0: सही बात है,
1: वो उस वक्त पहले ही बोल दिया होता है कि यार सुनना मैं उस वक्त व्यस्त रहूंगा, शादी में आना ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना,
0: आना और खाना खाना और चले जाना।
1: हाँ, मिलके जरूर जाना,
0: मिलके जरूर जाना। हाँ समीर जी, अब ये बताइए कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतना सारा ये प्रोसेस बता दिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहां आपने किसी नए टैलेंट को डिस्कवर किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंट्रोड्यूस किया हो फिल्म इंडस्ट्री को, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: सर मेरे लिए सबसे खूबसूरती की बात यही है कास्टिंग प्रोसेस में, कि मुझे नए फेस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मेरे लिए काम कर पा रहा हूं, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, एस्टेब्लिश एक्टर है, नोन फेस है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करेगा ऑडिशन, नो डाउट, क्योंकि उसका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना है, लेकिन एक नए फेस को एक्टिंग ऑडिशन वाले प्रोसेस में कराना और डायरेक्टर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है सर। और मेरी किक एक्चुअली, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हें किक किस में मिलती है, तो मुझे किक एक नए एक्टर के साथ में अच्छा ऑडिशन कराने में कितनी होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो मैं बड़ा ही मजा, मतलब एंजॉय करता हूँ, जैसे एक कटल में एक बच्ची है, अमिया नाम का कैरेक्टर है, अगर जिन्होंने भी वो फिल्म देखी हो।
0: अच्छा।
1: तो वो उसकी लाइफ का पहला ऑडिशन था और पहली बार वो एक्टिंग भी शायद 2-3 महीने पहले उसने थिएटर ज्वाइन किया था जयपुर में।
0: अच्छा।
1: और वहां पे वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रैंडमली, तो मैंने पहला ऑडिशन लिया, तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, कैमरा फ्रेंडली होना, लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार आप बिलीव करते हो कि यार लेट्स ट्राई ना, एक्सप्लोर करते हैं, दूसरा टेक लिया पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया, एट द एंड कुछ 8-10 टेक हुए थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और वो 8-10 टेक में ये हो गया कि अब बेस्ट मिल गया है।
0: ओके ओके।
1: हाँ, और अजीब बात है कि उसके साथ में जो मैंने चार लोगों के ऑडिशन किए वो लोग फाइनेस्ट एक्टर थे ऑलरेडी.
0: ओके ओके.
1: हाँ लेकिन एक होता है ना कि एक रॉनेस जो होती है किसी एक्टर में वो नेचुरली होती है ना. तो वो फिर आगे मैंने ऑप्शंस भेजे और फाइनली क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ना. हाँ. कि शायद यार इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. और फाइनली ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर रहते हुए ही मुंबई से कि जो लोग मुंबई में 5-5 साल रह के पूरी नहीं कर पाते. और अभी वो शिक्षा एंटरटेनमेंट के जो चाइल्ड सुपर स्टार है उसमें अच्छा। उसको काउंट किया जाता है सर.
0: सही बात है. तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का पुण्य का काम है साहब. आपने मतलब एक रॉ पत्थर को तराश के हीरा बना देते हो अगर इस तरह से कहूं.
1: मतलब बहुत दुआएं मिलती है सर. बहुत दुआएं.
0: बहुत दुआएं.
1: बहुत प्यार मिलता है. बहुत प्यार मिलता है सर. और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बचपन में मेरी फैमिली के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला है. दोस्तों के थ्रू बहुत प्यार मिला है. और जिस करियर में हूँ जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है सर. प्यार के अलावा दुआएं बहुत मिलती हैं.
0: लोगों की आंखें भीग जाती होंगी साहब जब आप उनको ऐसा चांस देते होंगे. मैं तो
1: सर कितना अच्छा लगता है कि किसी के मैंने ऑडिशंस किए उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि यार प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का. ठीक है कोई मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं मैं जिसमें मैं ऑडिशन की प्रोसेस के बारे में बात करता हूं.
0: अच्छा अच्छा.
1: लोग वहां से सीख के जाते हैं और कहीं उनका 1 साल बाद 1.5 साल बाद 2 साल बाद कहीं सिलेक्शन होता है. अच्छा। फिर उनका वो पहली बार मैसेज आता है कि सर मैंने आपसे वहां से ऑडिशन का प्रोसेस सीखा उसको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे प्रोजेक्ट मिला है सर. थैंक यू वेरी मच.
0: याद तो करते ही होंगे आपको. बिल्कुल सही बात.
1: हाँ तो वो वैसा है कि वो ब्लेस्ड है सच में.
0: अच्छा अब थोड़ा सा जिस विषय पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी कास्टिंग काउच के लेकर बहुत सारी बातें होती है. तो एज ए प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आप इस रियलिटी पे क्या कहना चाहेंगे. मिथ है ट्रुथ है या हाफ ट्रुथ है या हाफ मिथ है कुछ इस बारे में.
1: ये उसी तरीके से है कि भगवान होते हैं शैतान होते हैं. ठीक है देखा किसी ने नहीं है सर. ठीक है कई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे रात को भगवान दिखे थे और कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखा था. तो यही है कि ये होता है सिर्फ मानने पे है. ठीक है ये वही थ्योरी है जैसे मुझे 7 साल हो गए सर मैंने नहीं देखा कभी.
0: अच्छा
1: ठीक है क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जैसे वो बच्ची को कास्ट किया था मैंने. कई सीरीज में मैंने लीड एक्टर भी कास्ट किए हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था.
0: ओके.
1: तो कहीं ना कहीं मैं जिस प्रोसेस पे चल रहा हूं ना मैं उसी पे बिलीव करूंगा सर. और मैं लोगों को भी यही समझाता हूं कि आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो. यही है कि और कई लोगों के लिए सर कास्टिंग काउच इतनी ज्यादा प्रभावी है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके बिना काम ही नहीं मिलेगा. और मैं ये बोलता हूं कि यार मैंने पिछले 5-7 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं ये तो एग्जीक्यूशन वाली बात बता रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपोल कल्पना बोल रहा हूं कि मेरा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं कास्टिंग वाला होकर के मैं जुगाड़ लगा करके किसी का सिलेक्शन करवा रहा हूं. जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है जानकार नहीं है. उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ठीक है तो प्रोसेस तो वही है ना कि आप अच्छा ऑडिशन दो आप कास्ट हो जाओगे. दैट्स इट. तो कास्टिंग काउच तो वो है कि सिर्फ होता है ना कि हर जगह चाकू के दो काम होते हैं. या तो आप उससे सलाद काट लो सब्जी काट लो फल काट लो या फिर किसी का गर्दन काट लो. तो इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन सर. और मुझे तो ये लगता है कि जब भी मैं किसी नए फेस को स्पेसिफिक लड़कियों को मैं अगर किसी अच्छे कैरेक्टर में कास्ट करता हूं ना सर तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि मैंने एक एक्टर कास्ट किया है. मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो एक लड़की है ना वो 5 लड़कियों को ये बताएगी कि भाई कोई कैरेक्टर पाने के लिए आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत है.
0: अच्छा, आपके
1: काम के बिहाव पे काम मिल जाएगा. और वो 5 लड़कियां और भी 5 लोगों को बताती है. तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगर कोई नया फेस है ना और वो अच्छे कैरेक्टर में जाता है. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर इस मिथ को लोगों की जो मिथ बनी हुई है ना थ्रू आउट ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वही है कि जब आप बेहतर टैलेंट देते हो ना, तो फिर सारे एक्सक्यूज साइड में हो जाते हैं सर। और आप देख लो कि आज इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं सीरीज में खासकर, वो लोग हैं जिनका इंडस्ट्री का में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सब सब लोग उसी तरीके के हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट है वो बहुत मायने रखता है।
0: चलिए, बहुत ही बढ़िया तरह खूबसूरती से आपने जवाब दे दिया इस ट्रिकी से सवाल का, मजा आ गया। तो अब हम करीब करीब समीर जी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो हर साल कई यंगस्टर ड्रीम्स लेकर मुंबई आते हैं, उनके लिए आपका क्या ऑनेस्ट मैसेज है? हालांकि अभी आपने बताया,
1: ऑनेस्ट मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो सके कॉन्टेक्ट बनाने की जगह क्राफ्ट पे काम कर लें, और ऑडिशन का जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको जितना आप बेहतर समझ लोगे ना, कि आपको एक्टिंग आने के साथ साथ एक अच्छा ऑडिशन भी आना चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं एक रोल दिलाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है एक अच्छे ऑडिशन का।
0: ओके,
1: तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कैमरे पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे पर ही करनी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ते हो, आप थिएटर करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका कहीं ना कहीं उससे बेस क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल थिएटर करो या 5 साल बुक्स पढ़ो और उसके बाद आप सीधा कैमरे के सामने आओ और आप कुछ कमाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे सर।
0: ओके ओके,
1: आपको पैरेलल ये सारी प्रोसेस रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस कैमरे पे भी करनी पड़ेगी अगर आपको सिनेमा के लिए काम करना है।
0: बड़ी गहरी बात कह दी आपने यार समीर जी, मजा आ गया इस बात में आपकी, मतलब ये जो मैसेज
1: है, वो आपकी आपकी वाइब इतनी अच्छी है ना कि मेरे अंदर से अपने आप कुछ अच्छी बातें आप निकाल रहे हो, जैसे हम लोग एक्टर से निकालते हैं।
0: कैमरे पे एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ये काम इट इज डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मतलब yes. ही आप स्टेज एक्टर कितने अच्छे हो, कितने अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप जब तक कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं हो। संजीव कुमार के लिए कहा करते थे, वो एक उसमें ही जाने कितने वो कर देते थे, उसके लिए बताते थे लोग बात।
1: क्योंकि ये सर ये वही वाली बात है कि आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया ना, तो बेस तो वही है, इंजन का बेस ही है, रेस है, क्लच है, आपको स्टार्ट कैसे करनी होती है, प्रोसेस सेम है, कार का भी सेम है, ट्रक का भी सेम, जीप का भी सेम है। लेकिन आप बाइक चला के आप कार डायरेक्टली स्पीड से नहीं चला सकते, तो आपको कार चलाने के लिए कार भी सीखना पड़ेगा बैठ करके,
0: कार भी।
1: तो वही ये है कि थिएटर जो है वो कहीं ना कहीं बेस है, वो इंजन है एक तरीके से,
0: ठीक,
1: जो आपको पावर देता है। लेकिन अगर आपको जितनी वेरिएशन की आपको गाड़ी सीखनी है, तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा सर। तो वही कैमरे के ऑडिशन का प्रोसेस है कि आपको कैमरे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वर्कआउट हो पाएगा। यस
0: बिल्कुल, आपको कैमरे के सामने सहज होना, कैमरे से दोस्ती होना और कैमरा कॉन्शियस ना होना, तीनों चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट।
1: मतलब एक टैगलाइन देता हूँ सर मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में
0: जी,
1: कि बेसिकली कैमरा घोस्ट होता है।
0: ओके,
1: कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। जो लोग 1 लाख लोगों के सामने बोलते हैं ना, जब वो कैमरे के सामने आते हैं सर, मैंने इतने लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं सर, गला सूख जाता है उनका।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो कैमरे को घोस्ट बना, घोस्ट है कैमरा, उसको जब तक आप दोस्त नहीं बनाओगे
0: वाह,
1: तब तक आपका आप एक्टिंग जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग क्या है कैमरे के लिए, जब तक वो कैमरा आपका दोस्त नहीं बनेगा ना, तब आपकी शुरुआत होगी एक्टिंग की, कि यार चलो अब कुछ करते हैं। तो पहले तो आपको दोस्त बनाना पड़ेगा कैमरे।
0: मजा आ गया साहब, मजा आ गया। आपके दोस्त और घोस्ट वाली बात तो बस लाख टके की बात है, यही कहूँ लाख टके की बात है। तो चलिए, मैं तो अब बस आपसे आखिरी एक छोटी सी बात कर रहा था कि अगर एक फिल्म कास्ट करनी हो समीर पहाड़िया जी को, तो रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स में आपको करेक्टर ढूंढने, टैलेंट ढूंढने आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन पे ढूंढेंगे, थिएटर ग्रुप पे ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अगर आपको अपनी एक फिल्म कास्ट करनी हो तो?
1: सर मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा जब तक मुझे बेहतर ऑप्शन मिले।
0: चलिए
1: तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं कि हम लोग अपने आपके सिलेक्शन को जैसे सबको बताएंगे, थिएटर ग्रुप में जाएंगे तो थिएटर में एक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए कालबेलिया वाले लोग, तो हम लोग कालबेलिया वालों के पास जाते हैं हम लोग। जैसे कई बार वो रस्सी पे चलते हैं उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम लोग ऐसा है कि जब तक हमें बेहतर कैरेक्टर नहीं मिल जाता ना, हम लोग हर जगह जाते हैं सर, लोगों को मैसेज करते हैं। अगर हमें आसाम का कोई एक्टर चाहिए तो आसाम तो जो हमारा रिश्तेदार भी होगा ना, उससे भी हम लोग कॉल करके, जिससे हम कभी एक साल में बात नहीं करते हैं ना, उससे भी हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि और बताइए सर क्या हालचाल, बढ़िया यार, उधर कोई थिएटर वगैरह है क्या, कोई एक्टिंग वर्किंग करता है तो कोई जानकारी हो तो नंबर दो ना। तो आप समझ रहे हो ना कि जितना एक्टर हमें अप्रोच नहीं करता, उससे ज्यादा हम लोग
0: अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया जी के साथ। आज हमने जाना कि फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में कास्टिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां कहानी, किरदार और इंसान तीनों को जोड़ने का काम होता है। समीर जी ने यह भी बताया कि स्ट्रगल रियल है, लेकिन टैलेंट, पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म से रास्ते बनते हैं। न्यू कमर्स के लिए उनका साफ संदेश है, ड्रीम बिग बट कम प्रिपेयर्ड। हम उम्मीद करते हैं आज की बातचीत आपको फिल्म इंडस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मैं समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की।
1: सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब मेरे अंदर जो इतनी सारी चीजें थी ना, उनको आपने बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है, तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जितना आप बेहतर से जी सकते हो जी लो, क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए।
0: तो अगर आप भी एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो याद रखिए, सही टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता, बस सही मौका और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ, तब तक सपने देखते रहिए, मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी

की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

0: मेरे हमराही,
1: मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदल।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

तो इशारों में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर्राता है। तुम भी तो इशारों में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर्राता है।

0: किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुई, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: थे हम अकेले,
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले,
1: चल पतंगे चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

ಕಟಾರಿ.

0: वो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों।
1: आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों।
0: वो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों।
1: आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों।
2: धिम धिम बरसे प्यार

धीरे धीरे। सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
0: ओ छोड़ दो आजकल जमाना।

0: अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

सीमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हिमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेमनगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी

नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो एसएन और रेडियो तांतिया भील 90.8 एफएम पर। और आप सही समझे हैं, आज के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के इस एपिसोड में हमारे खुसूसी शायर हैं शकील बदायूनी। अभी हाल ही में 20 अप्रैल को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। सूरत और सीरत से इस खूबसूरत से शायर का जन्म 3 अगस्त 1916 को हुआ था। शकील साहब का इंतकाल सिर्फ 53 साल की उम्र में 1970 में ही हो गया था। उनकी 53 ईयर्स की जिंदगी में हिंदुस्तान 31 साल तक एक स्लेव नेशन था, जबकि उस दौर के तकरीबन सभी शायरों ने गरीबी, मुफलिसी, बेइंसाफी, गुलामी और आज़ादी के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन शकील साहब एक मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक थे। वो अपनी अलग ही दुनिया में जीते थे, जिसमें मोहब्बत, इश्क, वफा, उल्फत का ज़्यादा बोलबाला था। खुदा के नेक बंदे होते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बहुत खूबसूरत भजन भी लिखे थे दोस्तों। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं शकील साहब की मशहूर गजल, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। मलिका गजल बेगम अख्तर की पुरसुकून आवाज में, शौक फरमाए।

ये फलक फलक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, ये फलक फलक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, वो नजर भी क्या नजर है जो न समझ ले इशारा, मुझे आ गया यकीन सा यही है मेरी मंजिल, मुझे आ गया यकीन सा यही है मेरी मंजिल, सरे राह जब किसी ने मुझे दफ़तन पुकारा, कोई आए शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, के उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा, मेरी जिंदगी है जालिम, मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से आशकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। दोस्तों, रफी साहब की पुरकश पुरकश आवाज में ये दर्द में डूबी कहानी सुनिए। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा,

अब न पूछेंगे हम किसी से रास्ता तेरा, अब न पूछेंगे हम किसी से रास्ता तेरा। बहुत भटक लिए हम तेरी तलाश में, हमने दिल का दरवाजा अब बंद ही कर दिया है, क्योंकि हर नया शख्स वही पुराना जख्म देता है। वो बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, तू भी तड़प तड़प के पुकारे के हाय दिल। तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से। दोस्तों, शकील बदायूनी के कलाम में जहां एक तरफ मोहब्बत की नजाकत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मुकाम है जहां शायर साफ कह देता है कि अब राहें जुदा कर लेना ही बेहतर है। गुजरे हैं आज इश्क में हम इस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। अपनी पुरकश आवाज के साथ रफी साहब

ना ये जिंदगी मेरी जिंदगी, ना ये दास्तां मेरी दास्तां, मैं ख्यालों वहम से दूर हूं, मुझे आज कोई सदा न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। वो उठे हैं लेके खुम ओ सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बज्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। बहुत मखमली तराना बेगम अख्तर साहिबा की आवाज़ में।

दोस्तों, सुरैया और नूरजहां को जहां मलिकाए तुरन्नम खिताब से नवाजा गया था, लेकिन सिर्फ एक ही मलिकाए गजल रही और वो थी बेगम अख्तर साहिबा। एक खूबसूरत सा कलाम बेगम अख्तर की आवाज़ में सुनिए। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा।

वक्त के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए, उल्फत के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए। नजरों पे लगी है पाबंदी, दीदार की बातें करते हैं। शकील साहब की ये गजल एक बहुत ही गहरा और तलख सच बयां करती है कि जब तक कोई शख्स खुद किसी दर्द या तजुर्बे से ना गुजरे, वो दूसरों के जज्बात का मजाक ही बनाता है, समझ ही नहीं पाता। जो गुजरती है दिल पर वो दिल ही जानता है शकील, बाकी सब तो तमाशा देखकर बातें करते हैं। किनारे पर खड़े होकर तो सब मशवरा देते हैं, तूफान से लड़ने वाले ही गहराई की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। मेरे जख्मों की नुमाइश अब फिजूल है जहां, यहां लोग मरहम की जगह नमक की बातें करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाजे बयां लता जी की आवाज में फिल्म मुगले आजम से, इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। चौक फरमाएं।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: आज एक वृहद स्तर पर शुरू कर दी है उन्होंने, और फिर भी हमें जो है सिकल सेल की जांच, हम आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी में हैं तो यहाँ हमको 6 माह से लेकर 40 वर्ष के बीच में कभी भी करवा सकते हैं। अब अभी हमारे पास में कई तरह की जांचें होने लगी, हम नवजात बच्चे की भी जांच कर रहे हैं और गर्भ के अंदर बच्चे की भी हम सिकल सेल की जांच कर रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं तो हम कर रहे हैं। अभी जो हमारे शासन की ओर से सभी गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल की जांच करना हमारी ओर से अनिवार्य हो गया है, शासन की ओर से अनिवार्य है। शासन हर गर्भवती महिला की सिकल सेल की जांच कर रही है एवं आने वाले समय में और वर्तमान में हम अभी जिला स्तर पर कर रहे हैं, सभी नवजात शिशुओं की जांच कर रहे हैं सिकल सेल की, एवं 6 माह से लेकर 40 वर्ष तक के सभी महिला पुरुष बच्चों की हम सिकल सेल की जांच कर रहे हैं।
1: अच्छा, मतलब सर अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है और अस्पताल आ रहा है, 6 महीने से लेकर के 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति है, उसे अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए जिला अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में।
0: बिल्कुल, जो हम सभी जगह की बात नहीं कर रहे, हम आदिवासी बाहुल्य जिलों की बात कर रहे हैं, तो इन बाहुल्य जिलों में सिकल सेल का जो है अधिकता है, इस बीमारी की अधिकता है, और इसीलिए हम हर व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। और अगर कोई छूट भी जा रहा है तो उनसे भी हम यही कहते हैं कि आप अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं, बारंबार आप बीमार हो रहे हो, बार बार बीमार हो रहे हो, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द बार बार हो रहा है, आप थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हो थक जा रहे हो, थकान हो रही है और खून की कमी हो रही है, किसी तरह का पीलिया दिख रहा है या छाती में दर्द उठना या जो है कॉन्स्टिपेशन होना, तो ऐसी सारी समस्या अगर आपको हो रही है तो आपको सिकल सेल की जांच करवानी चाहिए।
1: जी सर, झाबुआ का जो पानी है उसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि यहाँ फ्लोराइड इसके पानी में बहुत ज्यादा बहुत मात्रा में पाया जाता है, क्या सिकल सेल रोग का पानी से कोई संबंध है?
0: सिकल सेल और पानी का कोई संबंध नहीं है, मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी कैसे होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, माता पिता में होगा तो बच्चे में होगा, तो इसका पानी या अन्य किसी खाद्य पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है।
1: अच्छा जी सर, लेकिन इसका क्या वातावरण यानी जलवायु या वातावरण का मरीज पर कोई प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो सिकल सेल जो बीमारी होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो जिसे हम खून कहते हैं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो अत्यधिक तापमान या अत्यधिक ठंड या किसी तरह का स्ट्रेस या कठिन परिश्रम की वजह से जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो अंडाकार होती है वो जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ या बुखार आया या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो ये हसियाकार हो जाती है। हसियाकार होने से क्या होता है कि ये जो हमारी छोटी छोटी रक्त वाहिनियां हैं उनमें जाके फंस जाती है, और जिसके कारण क्या है कि आगे की खून की सप्लाई बंद हो जाती है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण बच्चों में या मरीजों में जो है दर्द का एहसास होता है, दर्द होने लगता है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस बीमारी पर होता है, लक्षणों पे होता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: और सर एक मरीज जो है वो इससे कैसे बचाव कर सकता है खुद का?
0: जब भी हमारे पास कोई सिकल सेल मरीज आता है तो हम उन्हें बस यही कहते हैं कि आपको अत्यधिक ठंड से बचना है, अत्यधिक गर्मी से बचना है, कठिन परिश्रम से बचना है और पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेना है। सिकल सेल मरीज को हम यही सलाह देते हैं कि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपको दर्द का एहसास उतना कम होगा, क्योंकि जितना हाइड्रेट रहेगा उतना उसके सिकलिंग होने की संभावनाएं कम होती है।
1: अच्छा सर, हर रोग का हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कुछ घरेलू इलाज होते हैं, क्या सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा कुछ है, कुछ घरेलू इलाज है?
0: नहीं, घरेलू इलाज तो यही है कि आपको अत्यधिक मात्रा में पानी पीते रहना है। जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ तकलीफ होने लगी आप तुरंत आए, दर्द निवारक गोली डॉक्टर वगैरह डॉक्टर की सलाह के बगैर ही लें। घरेलू उपाय तो सिर्फ पानी है इसका, कि आप पानी की मात्रा अत्यधिक रखें और साथ ही जो हमारा तंदुरुस्त भोजन करें,

0: पत्तेदार सब्जियां आहार में ले, फल फ्रूट आहार में ले, और क्या कहना चाहिए कि नशे तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहे। घरेलू उपाय तो यही है कि आपको खान पान अच्छा रखना है।
1: सर, आपने बातचीत की शुरुआत में ये बात भी कही थी कि शादी के पहले काउंसलिंग करवाना बेहद जरूरी होता है और वो उससे काफी मदद मिलती है, ये कैसे करवा सकता है कोई भी व्यक्ति?
0: मैं आपको वही बार बार कह रहा हूं कि जो ये बीमारी है आनुवंशिक है, और माता पिता में होगी तो बच्चे में होगी, ठीक है। तो अब हमने यही टारगेट किया है कि हमको शादी से पूर्व जो भी जोड़ा हमारे हमको लग रहा है कि ये आने वाले समय में ये शादी करने वाले हैं, तो जो हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया है यहाँ पर जिले भर में, जिले भर ये कहिए कि अभी हम पूरे मध्य प्रदेश की 89 ब्लॉक्स में हम ये अभियान चला रहे हैं, सरकार शासन चला रही है, तो शासन जांच के साथ साथ में एक जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड बांट रहा है। तो वो किस तरह से काम करेगा? तो जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड पुरुष का अलग होगा, महिला का अलग होगा, दोनों का अलग है, फिर बीमारी वाले का अलग होगा, वाहक वाले का अलग होगा, और सामान्य वाले का होगा, जिनको मतलब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है उसका नेगेटिव का होगा। ऐसे करके हमारे पास कुल 6 तरह के कार्ड बनेंगे, और जब ये सभी कार्ड को, या ये कहिए कि महिला का और पुरुष का जब हम कार्ड मिलाएंगे, तो उस कार्ड से ये पता चल जाएगा कि इस जोड़े को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक, ये तो हमारा तरीका रहेगा कि हम जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड के माध्यम से हम काउंसलिंग करें। दूसरा, हम हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, हमारे जो हमारे अमला है, स्वास्थ्य का अमला CHO है, हमारे ANM है, आशा है, उनके माध्यम से भी हम विवाह पूर्व काउंसलिंग करवा रहे हैं, और हमारे काउंसलर भी हर क्षेत्र में है। तो काउंसलिंग का हमारा तरीका ये है कि हम उस जोड़े को उसकी जांच करेंगे पहले, अगर वो सिकल सेल रोगी हैं, दोनों ही रोगी हैं, तो हमारी सलाह होगी कि आप विवाह ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि दोनों ही सिकल सेल रोगी हैं, तो ये आनुवंशिक है कि दोनों में ही लक्षण बढ़ के होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि हमारे हर बच्चा वो सिकल सेल रोगी ही आएगा। ऐसे में जो दोनों रोगी हैं, तो दोनों रोगी की शादी उचित नहीं होगी
1: जी।
0: अगर दोनों ही सिकल सेल वाहक है तो भी संभावनाएं हैं। कैसे? उसमें 50% हर डिलीवरी पे संभावना रहेगी कि वो वाहक आएगा बच्चा, और 25% संभावना रहेगी कि वो बीमारी के साथ आएगा। तो ऐसे में हम ये भी कहते हैं कि दोनों वाहक को भी शादी नहीं करना है,
1: नहीं,
0: है ना। ऐसे ही सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी की अगर होती है शादी, तो उसमें भी संभव है कि 50% हर डिलीवरी में बच्चा रोगी आएगा और 50% वाहक आएगा, तो वहां भी संभावनाएं हमारी कम हो जाती है। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप सामान्य, जिनको कोई भी लक्षण ना है, उनसे शादी करें। और ऐसे ही अगर हमने ये काउंसलिंग करेंगे, करते करते हमने अगर सिकल सेल रोगी से वाहक पिलाएंगे अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी जो वाहक है उसको हम सामान्य पिलाएंगे, यू इस तरह से अगर हम चलेंगे, तो जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें समय बद्ध किया है कि 2047 तक हमको सिकल सेल का उन्मूलन करना है, इसको मिटाना है, तो इस रोग को हम इस तरह से मिटा सकते हैं।
1: सर, आपने चूंकि प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शासन की ओर से वर्तमान में मरीज को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या योजनाएं हैं उसके लिए?
0: शासन की ओर से सिकल सेल रोगी को, खास करके रोगी को, वाहक का तो सामान्य जीवन चलता है, रोगी के लिए तो पहले तो उसके रोग का निवारण के लिए, मतलब जो लक्षण है उसके निवारण के लिए, हर जगह पर हर CHO को, जो हमारे हमारा ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य अमला है, उस तक हमने दवाइयां उपलब्ध करवा दी है। फिर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पतालों में, वहां फ्री जो है उनको निःशुल्क जो हमारी दवाई वितरण, साथ में अगर उन्हें भर्ती होना पड़ रहा है तो वो भर्ती की सुविधा और सारी सुविधाएं मुफ्त है। यदि किसी मरीज को खून की आवश्यकता होती है,
2: इन्हें खून चढ़ाना पड़ रहा है,
0: तो ऐसे मरीज को हम जिला स्तर पे एवं हमारा पेटलावत जो है वहां पर हम उन मरीजों को भर्ती करते हैं और अपने पास से ये कहना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट एवं फ्री ऑफ डोनर हम उनको ब्लड दे रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जो सिकल सेल एवं थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं तो इनके परिजन ब्लड अरेंज कर करके ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल में 2 या 3 बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो क्या होता है कि कोई भी परिजन है, उनके रिश्तेदार है, वो कब तक अपना डोनेशन करेंगे, कि उन्हें पता है कि हर तीसरे महीने हर दूसरे महीने में उसको ब्लड चढ़ाना है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अपने पास से ही ब्लड डोनेशन करवा के वो उन्हें ब्लड दे रहे हैं।
1: अच्छा
0: जी, और जो शासन की आयुष्मान योजना है, यदि कोई मरीज अत्यधिक गंभीर हो रहा है, जिसे अन्य जांचों की आवश्यकता है, बड़ी जांचों की जैसे MRI की जांच या किसी तरह की सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो वो हम आयुष्मान के माध्यम से उनको हम इलाज मुहैया करवा रहे हैं। ऐसे ही अभी सरकार द्वारा दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इनको
1: जी,
0: ताकि क्योंकि ये भी एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर करता है, जीवन शैली उसकी कहीं ना कहीं बाधित होती है, तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा इन्हें दिव्यांग में भी लिया गया है एवं दिव्यांग उसके माध्यम से सरकार के माध्यम से हम दिव्यांग सर्टिफिकेट भी इनको दे रहे हैं। एवं इंदिरा आवास योजना भी चल रही है, वो भी प्रदाय की जा रही है शासन के द्वारा इनको
1: जी।
0: एवं जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं शिक्षण संस्थानों में भी उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है
1: जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी हो जो हमारे श्रोताओं के लिए, आदिवासी श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण हो और जो उनको आप कहना चाहें?
0: जी बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया गंभीर है, आनुवांशिक है, इससे रूप जो है निदान तो ना हो गए बाकी इससे बचाव किया जा सकता है। बचाव का पहला मंत्र यही है कि आप पानी का अत्यधिक सेवन करें। जो सिकल सेल रोगी है उसे पानी कम से कम दिन भर में 4 लीटर पानी की, प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी उसे लेना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि धूम्रपान, नशा, तंबाकू, इन सबके सेवन से दूर रहना चाहिए। दूसरा कि एक संतुलित आहार ले, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर अंडा वगैरह खाते हैं तो वो भी खाते रहना चाहिए, प्रोटीनियस डाइट भी लेते रहना चाहिए। साथ ही जो रोगी हैं उनको अत्यधिक ठंड से बचना चाहिए, अत्यधिक गर्मी से बचना चाहिए, और हम स्कूली जो हमारे स्कूली शिक्षक हैं और जो हमारे टीचर हैं उनसे भी हम यही कहते हैं कि जो आपके अधीन जो सिकल सेल मरीज है या जो बच्चे हैं उनको आप आउटडोर गेम से दूर रख के उनको इंडोर गेमों में आप आगे ले जाएं, इंडोर एक्टिविटी में उन्हें आगे ले जाएं। तो जो आउटडोर एक्टिविटी की वजह से जो उसकी तकलीफें बढ़ती है वो इंडोर से मतलब इंडोर गेम्स में वो इम्प्रूव होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा वो
1: जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी जानकारियों को देने के लिए
0: जी। धन्यवाद,
3: खूब खूब आभार डॉक्टर साहब ने अग्रवाल जी की तमुई। आज हमारा श्रोता भाइयों ने सिकल सेल जेवी गंभीर बीमारी ना बारा मा जानकारी अवगत करावी। तो श्रोता बंधुओं, यह हतेला डॉक्टर साहब संदीप जी चोपड़ा आपड़ा झाबवा जिला ना सरकारी अस्पताल मा जिला सिकल सेल नोडल अधिकारी से अने सवाल पूछनारा हतेला शिशिरजी अग्रवाल पत्रकार महोदय से अने भोपाल नारिया वाला। आज आपुनी वात वताड़ी सिकल सेल एक गंभीर बीमारी से, इन बीमारी ने बारा में जेतरु आपू जानकारी राखी एतरो बचाव थाई। खास कर ये बीमारी घनी टाट पड़े एना मा अने अधिक गर्मी पड़े एना टाइम मा एना लक्षण आपुन देखवा मले अने एनो बचाव करवा हारू आपुन घनी बधी वातियों ध्यान राखवो पड़े, ये बात पण आपुन डॉक्टर साहेबे बताड़ी से। खान पान आपुन असली करवानो, दारू, गुटका अने सिगरेट जेवी चीजों देखी आपुन बेहाथ दूर रहेवानु। कारण के आपुन डॉक्टर साहब के दू की ये एक एवी बीमारी एने जड़ देखी खत्म नहीं करी सकी, एनो इलाज करीने बचाव करी सकी। एत्रे आपुन खासकर खान पान मा तो ध्यान देवो से, अने इना लक्षण आवे तो तुरंत आपुन अस्पताल जावानु अने डॉक्टर साहब हाथे मलीने वात वताड़वानी। एवी बीमारी नी वात हताड़वी नी जोवे, केम की ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चाले छे। एने आपु जणावीने ज एनी बीमारी ने खात्मो करी सकी। तो मारा श्रोता बंधुओं, आजना कार्यक्रम में बस एतरी वात। हूँ आरजे राकेश, हाव लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु कैथा मती जाजो, हामलता रहेजो आपड़ा झाबवानो पहलो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज, तमारा ज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते। अने नमस्कार।
4: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
5: नमस्कार साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत उबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश, कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत

0: तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो, और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी।
1: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM

पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवच नासी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं, उनकी सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नज़दीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहाँ पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, चूंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रबी की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं आपको, सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्थी।
4: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी, अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो शिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है, तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
3: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
2: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
1: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खास तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या

0: रोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम डेढ़ महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: रेडियो टैंटाबिल 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: रेडियो टांटिया फील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफर महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी बात है।
0: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
3: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहां पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहां से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए उनको दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए। तो
0: वही पीएयू के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही पीएयू ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
4: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैक्सिको ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: आइए सुनते हैं अपनी ही संस्कृति का एक और सुंदर गाना।

0: दोस्तों।
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

0: या रोकड़।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है, यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है, किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांडिया भील 90.8 FM जल्द शुरू करने वाला है। और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है। आइए इस खास रिपोर्ट को और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
0: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री

शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः तीन तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोप कर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकाल कर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहें। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय ना लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश न करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर

0: NEH region, Umroi Road, Borapani, Meghalaya. Directorate of Mushroom Research, ICAR, Champaghat, Solan, Himachal Pradesh.
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से, ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशुपालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशुपालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉलीहाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो, आपकी बातें।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें सुरों के इस सफर पर चलें, जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम, बहुत ही सौंधा सौंधा सा एपिसोड लेकर मैं वापस से आपके पास हाजिर हूं, आपका दोस्त समीर। और आज जो मेहमान, जो प्रतिभा, जो गायक, जो सिंगर हमारे साथ हैं वो हैं रघुनंदन जी। हम प्यार से उनको रघु बुला सकते हैं, ऐसी इजाजत दी है उन्होंने हमें। रघु भाई, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे सभी आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। रघुनंदन भाई,
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत लोगों की तरह मैंने भी यहाँ इंजीनियरिंग किया और 10 साल अमेरिका में काम किया और वापस आ गया। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कन्नड़ा ओल्ड सॉन्ग्स एंड द ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ हिंदी। जैसे हमारे हिंदुओं के बहुत भगवान होते हैं ना, तो मेरे लिए भी ऑल सिंगर्स आर भगवान। ऑल द रफी, किशोर, मुकेश और पीवी श्रीनिवास, एस पी बॉल, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं मेरे। सो एंड मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं रेडियो सुनते ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर में हमेशा रेडियो बजता था और मेरे पास मुझे कलेक्शन का बहुत शौक है। सो मैंने कैसेट का ह्यूज कलेक्शन कर दिया और उसके बाद जब कैसेट चला गया तो मैंने सीडी कलेक्शन कर दिया, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस कलेक्शन कर दिया। तो दैट वे आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड दैट्स हाउ आई बिल्ट माय passion for music.
0: Beautiful.
1: So, that's a little bit of introduction about me. Yeah.
0: Beautiful, beautiful. Actually, this is extremely, extremely important. किसी के बारे में अगर आपको जानना हो, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उनसे आप ये पूछ लीजिए कि what do you collect? N number of times लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन डू दे हैव। बहुत सारे लोग घड़ियां इकट्ठी करते हैं, बहुत सारे लोग कैप्स, हैट्स इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग शूज इकट्ठे करते हैं। आई मीन दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये करनी चाहिए दोस्तों, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक बार गौर कीजिए, अपने अंदर झांकिए, कुछ ना कुछ तो कलेक्ट आप कर ही रहे होंगे। बहुत सुंदर। चलिए, रघु जी के इस प्यारे से इंट्रोडक्शन के बाद उनकी इतनी सारे म्यूजिक कलेक्शन के नाम, हम पहला गीत पेश करते हैं जो रघु जी ने विद ऑल हम्बलनेस हमारे लिए प्रिपेयर किया। आइए, पेश करता हूं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शुरुआत रघु भाई। मुझे ये बताइए रघु भैया, आपका जो ये संगीत का सफर शुरू हुआ, आपने बोला कि आप रेडियो के साथ बड़े हुए, फिर आपने कैसेट्स इकट्ठे किए, सीडीज, यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह, लेकिन आपने गाना कब शुरू किया, कब आपको रियलाइज हुआ कि आई शुड ऑल्सो जम्प इन टू दिस यू नो रिवर ऑफ म्यूजिक?
1: हमारे घर में
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।
3: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से।
4: सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे।
3: आज के कलाकार के इस बेहद बेहद खूबसूरत, बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक एपिसोड में आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मेरे बहुत अच्छे मित्र कृष्ण कुमार जी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन बेहतरीन गायक हैं, एक टैलेंट हैं। बाकी

0: बेहतर होगा कृष्ण जी अपने बारे में खुद बताएं। तो कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: जी, नाम तो मेरा आपने बता ही दिया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार बहुत।
0: जी
1: जी, मेरा पूरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और मुझे दोस्त लोग प्यार से के बोलते हैं।
0: जी, स्वागत है।
1: जी जी हाँ, और जो सर मैं टीचर हूँ सर, एक्चुअली
0: बहुत खूब,
1: ये बेसिक शिक्षा परिषद जो स्कूल होते हैं उत्तर प्रदेश के,
0: जी
1: उसमें मैं मिडिल क्लास में टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट टीचर हूँ।
0: जी,
1: और झांसी में रहता हूँ सर मैं।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों,
1: झांसी से हूँ सर प्रॉपर, वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर से।
0: बहुत बढ़िया, झांसी के बारे में दोस्तों हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को भला कौन नहीं जानेगा। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है झांसी को देखने का। बड़ी ही बहुत ही खूबसूरत परिवेश है वहां का, पत्थर पहाड़। आप भी कभी अगर मौका मिले, आज की डेट में तो गूगल बाबा है ना, उनको गूगल कर लीजिए, झांसी की परिवेश आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत बढ़िया,
1: बिल्कुल सही।
0: तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को कृष्ण कुमार जी के ही गाए हुए इस बेहद बेहद खूबसूरत गीत से।

0: प्यारी शुरुआत। कृष्ण जी, प्रोग्राम को शुरू करता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं
1: जी,
0: ये गायकी का, गाना गाने का, इस प्रतिभा को, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का शौक आपको कब से हुआ?
1: सर, जहां तक शौक की बात है तो मुझे याद है, मैं क्लास सिक्स में था जब सर
0: जी,
1: तो एक स्कूल के फंक्शन में मैंने गाया था सबसे पहले
0: जी।
1: हाँ, सिक्स में था क्लास में, तो उस समय मैंने स्कूल के फंक्शन में गाया, तो उस समय मुझे वहां पर जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर चौधरी, मुझे याद आ रहा है
0: जी,
1: तो उन्होंने तुरंत अपने जिसको भी बोला हो मेरे लिए एक पेन सेट मंगाया उन्होंने, बड़ा खूबसूरत था।
0: ओहो,
1: हाँ, और मुझे वो गिफ्ट में दिया गया, तभी से मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तभी से थोड़ा सा गाने गाने का और शौक बढ़ा, उसके बाद फिर पता ही चला गया होगा, पता नहीं अभी तक मैं गा रहा हूँ,
0: वाह,
1: शौक तभी से है गाने का सर।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही कृष्ण जी। आप तो वैसे भी कलम के योद्धा हैं, आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, नए बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हैं, उन्हें सिखाते हैं कलम में कितनी ताकत होती है, और उस दिन उन महानुभाव ने आपको कलम ही गिफ्ट की, कलम का ही आशीर्वाद दिया, और बस वो आशीर्वाद आपको इतना प्यारा लगा कि आप संगीत की इस रास्ते पर, इस यात्रा पर निकल पड़े। क्या कहा जाए साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही प्यारी सोच, बहुत ही प्यारी मोटिवेशन आपको मिला उनसे।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आगे जाकर टीचर बन जाऊंगा।
0: बताइए तो साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो मैं उन महानुभाव को ही डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्होंने कृष्ण कुमार जी की जिंदगी में गायकी की ज्योत जलाई। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गायकी। कृष्ण जी
1: जी,
0: मुझे बताए, आप बहुत सारी कलाएं सीखना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले, या फिर किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे? कहते हैं ना, गलत कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट ऑफ वन और जैक ऑफ ऑल, वो वाली जो बात होती है कि आप सब सीखना चाहेंगे या किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे, और वो कला कौन सी होगी अगर ऐसा हो तो?
1: जी देखिए सर, कला में महारत हासिल करने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती
0: जी
1: है ना। तो वैसे भी मेरा सिंगिंग का शौक ही है, एक ही शौक है मेरा,
0: जी
1: और दूसरा टीचिंग का सर,
0: जी
1: एक टीचिंग भी एक कला है सर।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो अभी हाँ, और ये सिंगिंग तो बचपन से मतलब कर पाया जितना कर पाया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दौर में ये दोनों को कर पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अभी तक सीख ही रहा हूँ सर, इन दोनों कलाओं को पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो मैं सिंगिंग ही सीखना चाहूंगा सर।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। दोस्तों आपने सुना, कृष्ण कुमार जी सिंगिंग को ही और शार्प करना चाहेंगे और बेहतरीन बनाना चाहेंगे, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे उसको सीखने के लिए। बड़ी ही प्यारी बात, दोनों ही बातें सही होती हैं। बहुत सारी चीजों की जानकारी कई बार कंफ्यूज भी कर देती है, और किसी एक कला के पीछे शिद्दत से, बहुत ही प्रतिज्ञा से लग जाना भी अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। तो कृष्ण कुमार जी ने चुना है कि वो महारत हासिल करना चाहेंगे गायकी में, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हो जाए फिर एक प्यारा सा गीत कृष्ण कुमार जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी, आपको संगीत में क्या पसंद है? गाने पसंद हैं, मतलब गाने मतलब फिल्मी होना चाहिए या नॉन फिल्मी भी चलेंगे, या कुछ गजल्स, कुछ भजन, शास्त्रीय संगीत, या क्या कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा पसंद है संगीत में?
1: संगीत में तो सर वैसे मेरे ख्याल से जो मुझे पसंद है
0: जी,
1: जिस भी गाना कोई भी हो, सॉन्ग हो, म्यूजिक हो, जिसमें कानों को बिल्कुल कानों में जो रस घोल दे, है ना, और हाँ बिल्कुल कानों में जो रस घोल दे, जिसका म्यूजिक बहुत ही प्यारा हो, वही मुझे पसंद है सर। चाहे वो नॉन फिल्मी हो, फिल्मी हो, गजल हो, कुछ भी हो सर, मुझे सभी पसंद है। बस संगीत अच्छा होना चाहिए, बोल अच्छे होने चाहिए, तभी मैं सुनता हूँ सर। और ये मेरे को जो क्या बोलते ना, वो म्यूजिक जो बहुत ज्यादा हड़बड़ वाली, वो पसंद नहीं है सर।
0: मेरे ख्याल से अगर मैं जी
1: बोलिए सर,
0: मुझे जो अंदाजा लग पा रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो रैप म्यूजिक होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब विदा उतार चढ़ाव के जो चलता रहता है, शायद उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कृष्णा जी?
1: हाँ जी सर, वो मेरे को पसंद नहीं है। और वैसे भी जो मतलब बहुत ज्यादा जो शोरगुल वाले गाने होते हैं
0: जी,
1: हाँ, जिसका रिदम बहुत तेज होता है, तो वो मेरे को कम पसंद आता है सर।
0: बहुत खूब दोस्तों,
1: बाकी कोई नॉन फिल्मी हो, फिल्मी, मुझे सब पसंद है सर, लेकिन बस जो कानों को कर्णप्रिय होना चाहिए सर वो।
0: बहुत खूब कहा आपने साहब, बिल्कुल सही। संगीत की वैसे भी कोई भाषा नहीं होती। हमारा जो आज के कलाकार रीजनल प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारे देश की सभी रेस्पेक्टेड भाषाओं में संगीत आ रहा है, हमारे कलाकार आ रहे हैं, करीब सारी ही बार हमें भाषा समझ नहीं आती, लेकिन वो संगीत इतना मेस्मराइजिंग होता है, इतना सम्मोहित होता है कि हम बस उस गीत को या उस म्यूजिक को सुनते रहते हैं। भाषा से कोई लेना देना नहीं, शब्दों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो संगीत ही इतना प्यारा होता है। बड़ी प्यारी बात कही साहब आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए इस प्यारी बात पर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं कृष्ण कुमार जी की ही आवाज में।

0: कृष्ण जी, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा त्योहार है हमारे देश का, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कौन सा फेस्टिवल है?
1: सर, वैसे फेस्टिवल तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं।
0: जी
1: वैसे हमारे जो हिंदू धर्म का त्योहार जो दीपावली है सर,
0: जी
1: अब वो मुझे सबसे प्यारा लगता है।
0: जी
1: और इसकी एक कारण ये भी है सर, ये माँ लक्ष्मी जी से पूजन से संबंधित है,
0: जी
1: तो इसकी तैयारी बहुत पहले से ही होती है। घर में बड़ा अच्छा माहौल होता है सर, और इसकी तैयारियों के लिए सर क्या बोले
0: जी
1: वो सैलरी भी बहुत खर्च होती है। सबके लिए नए नए कपड़े लाना, सब चीजें
0: आहा
1: के लिए, और घर की जो ये और भी चीजें होती हैं दीपावली पे हम लोग खरीदते हैं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो उसकी तैयारी के लिए एक अलग ही जुनून सा रहता है,
0: बिल्कुल
1: वो पसंद है। और ये क्या है सर, प्रकाश का पर्व है, सभी जानते हैं,
0: जी
1: हम आप सभी जानते हैं प्रकाश का पर्व है। वर्ष में एक बार इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक और उम्मीद की जाती है माँ लक्ष्मी से, उनसे हम मांगते हैं कि सर सबके जीवन में, किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, प्रकाश रहे। और ये पैसा, माँ लक्ष्मी जो पैसा है, ये दुनिया उसी से चलती है, तो उसी की हम आराधना करते हैं, उसके लिए, माँ लक्ष्मी की। तो
0: जी
1: ये त्योहार इसीलिए मुझे पसंद है सर।
0: बहुत प्यारी बात कही साहब, बहुत प्यारी बात कही। मैं बिल्कुल मानता हूं, ये रोशनी का त्योहार है, ये खुशहाली का त्योहार है, सभी के मन में उमंग होती है। हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में और ज्यादा समृद्धि आए।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: पूरे साल हम इंतजार करते हैं नए कपड़े, या जो कुछ भी एक खुशी का, उल्लास का माहौल होता है, वो होता ही है। करीब करीब सभी त्योहारों में है, लेकिन ठीक है, दिवाली की बात थोड़ी सी अलग है। बहुत बहुत खूब कहा साहब, बहुत खूब कहा कृष्ण जी।
1: हाँ,